خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: वो मदीना जो कौने का ताज है, दुनिया की पेरिस को क्या कहते हैं, दुल्हन कहते हैं। पेरिस को क्या कहते हैं, दुनिया की दुल्हन दुल्हन कहते हैं। बेकनों का ठिकाना है, कौन इनका दूल्हा मदीने में, कौन इनका दूल्हा मदीने में। पेरिस दुल्हन कैसे हो सकती है, दुनिया की दुल्हन तो मदीना। जिसने मदीना शरीफ को दिल की आंखों में देखा तो उसे फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। फिर जब इश्क इस कदर बढ़ जाता है तो वो कहता है कि मेरी नजर को भाए दुनिया का हुस्न कैसे, मेरी नजर को भाए दुनिया का हुस्न कैसे, आंखों में बस गया है मदीना होना। काश हम दिल की आंखों से हुजूर का मदीना देखते। वो मदीना जो कौन है उनका ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। अल्लाह तमाम को हाजिर नसीब फरमाए, बार बार बा अदब हाजिर फरमाए। ये मदीना वहां जाना तो बड़ा शर्फ की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है, लेकिन ये वो अर्ज मुकद्दस है कि मलाइक लगाते हैं आंखों में अपने शबो रोज खाके मजारे मदीना। और ये वो मुकद्दस बारगाह कि अदब का ही जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर गामी आयत जुनेद बायज़ीदी जा जा। शायद इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं।

सिफारती सतह ते पाकिस्तान जे अहम कामयाबी भारतीय कोशिशूं नाकाम जनीवा में गडियल कौमन जे इंसानी हकन जे काउंसिल में पीण जे साफ पाणी ऐं सफ़ाई सुसराई बाबति ठहराउ मंज़ूर पाकिस्तान जे सिफारती कोशन सबबि पहिरियों भेरो ठहराउ में पाणीअ जी सरहद पार सहकार जो वाज़े हवालो शामिल जर्मनी ऐं स्पेन पारां पेश ठहराउ इंसानी हक़नि वारे काउंसिल जे 47 मेंबरनि मुल्कनि ठहराउ इतफ़ाक़ राय सां मंज़ूर करे वरितो पाकिस्तान तरफ़ां फर्स्ट सेक्रेटरी अदील खोकर ख़िताब कंदे चयो त जिते पाणी गडि॒यल हुजे हुते ज़िमेवारियूं बि गडि॒यल हूंदियूं आहिनि गडि॒यल पाणीअ ते सहकार पाड़ेसरी मुल्कनि विच में एहसान या रियायत न पर गडि॒यल ज़िमेवारी आहे मथां वहकिरे वारे दरियान जे मुल्क खे पाणी सियासी दबाउ जे हथियार तौर इस्तेमाल करण जो हक़ नाहे पाणीअ खे गडि॒यल ज़िमेवारीअ जे उसूलनि तहत इस्तेमाल कयो वञे।

साईं मुंहिंजा हर रस्ते ते को न को कंडो ज़रूरु हूंदो आहे। हर कंडो पंहिंजे अंदर में को न लिकाए रखंदो आहे। राज़ मां को न को इम्तिहान जनम वठंदो आहे ऐं हर इम्तिहान सां तजुर्बो ऐं तजुर्बे मां को न को सबक़ हासिल थींदो आहे ऐं वरी हर सबक़ वसीले मेहनत रंग लाहींदी आहे ऐं हर मेहनत जी शुरूआति सां चंद मसइला दरपेश ईंदा आहिनि। हर मसइले जो को न को हल ज़रूरु हूंदो आहे ऐं हर हल में वरी को न को नुक़्स ज़रूरु हूंदो आहे। हर नुक़्स पंहिंजी इस्लाह कंदो आहे ऐं हर इस्लाह पोयां सुठी तरक़ी लिकियल हूंदी आहे ऐं हर तरक़ी वरी पाण खे खणी ईंदी आहे ऐं जेकॾहिं असां अव्हां खे वरी चिटो ॿुधाईंदासीं त केतिरा ई ख़ूबसूरत रंग रंग पैदा कंदा आहिनि। हसीन ज़िंदगी ऐं ज़िंदगीअ सां साण आणींदी आहे ऐं पाण सां मोहबत प्यार उन्स चाहत ऐं प्रीत ऐं जॾहिं असां खे उहे सभु अनमोल शयूं मिली वेंदियूं आहिनि त असां ज़िंदगीअ खे समझी वेठंदा आहियूं ऐं जॾहिं ज़िंदगीअ खे असां समझी वरितो त पोइ असांखे हर हाल में ज़िंदगी घारण जो ॾांहुं अची वेंदो आहे ऐं समुझा जंहिं उहो ॾांहुं हासिल करे वरितो ॼण उन दुनिया जी वॾी शहनशाहत हासिल करे वरिती।

0: जी एसएमएन प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक यारहं वॻे ताईं कॾहिं बि न वञिजो निकिरूं पिया नंढे कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: अरे न खुश्क ऐं बीरोनकी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि 4 रंग जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं 4 रंग जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
5: yeah!

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
0: GFM 91.6।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: छा अवां अच्छन वारन खां परेशान आयो? पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर, पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज ज़ाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां। पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद।

प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां ऐं अॼु तव्हां जा मिलंदासीं SMS ज़रिए बि ऐं लाइव तव्हां जा नाला ज़रूर हलाईंदा हलाईंदासीं। कुझु ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: असली ग्लो बाय
3: नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय अक्सर।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर

0: जी रही हैं हम, अब स्किन की केयर भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे।
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसके लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
3: चॉइस सुपर वाइट।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

स्वामी जा ज़बान मां मिठा ऐं वणंदड़ ॿोल ॿोलण, सुहिणा ऐं संजीदा सुखन कढण, नरम ऐं साईंदड़ ॻाल्हि ॻाल्हाईंदड़ खे ई मिठी ज़बान चइबो आहे। जंहिं ज़बान मां मिठा ॿोल निकरंदा आहिनि तंहिंमें जादू खां बि वधीक असरु हूंदो आहे। अहिड़ी ज़बान मुरलीअ जे मंडर खां वधीक हूंदी आहे। मिठड़ी ज़बान सां बिरह वारियूं बातियूं करे इंसाननि जूं दिलियूं फतेह करे सघबियूं आहिनि। उहा ई मिठी ज़बान जॾहिं ॻाल्हाईंदी आहे तॾहिं ॼण प्यासी दिलनि में ऐं ज़िननि ते मोहबत जा मींहं वसण लॻंदा आहिनि ऐं कुर्ब ककर बणजी सूरनि जे सिज खां खे लिकाए छॾींदा आहिनि। उन ई ज़बान में अहिड़ी ताक़त आहे जो दुश्मन बि दोस्त बणजी वञनि था। उन्हनि मिठनि गुफ़्तगुनि जो मुल क़ीमती मोतनि खां बि महांगो आहे, पर जेकॾहिं पिरी प्यारो कारड़जी वञे त पोइ वेस बि कारा थी वेंदा आहिनि।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Zindagi guzario, etmad sa Quran ke samji, budhanda raho. Dr. Farhat Hashmi jo program Ta'limul Quran, rozano subuh 9:05 te, sirf GFM 88 network te.
0: Abhi budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6. सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज।

जी हाँ सभी जहाँ प्रोग्राम रोशन सुबह में अवा दोस्त साथ अवा जो नाला अवा ती पहुंचाई असो प्रोग्राम बुधन पाया मोहम्मद खान कुंभार मोहम्मद अमीन मरी हाले पुट स्टाफ मीरपुर खास का हाजी सोरब अली मंगरियो गोठ सचे ऋणो मंगरियो लगे बकापुर का प्रोग्राम बुधन पाया भाईरन की वरी मेहरबानी सतराम सेंगलानी मिठी थरपारकर का एरम पावर मीरपुर खास का मीरपुर खास का यासमीन मलक खालिक लाशारी अजीज जरवार अजीज सोलंगी मीरपुर खास का प्रोग्राम बुधन पाया भाईर की वरी मेहरबानी आसिफ अली चाचड़ लाड़ेकाने का प्रोग्राम बुधे पे भा की वरी मेहरबानी लाड़ेकाने का दुआ भी प्रोग्राम बुधे पई रुस्तम अली पावर गोठ पुनू पावर सेवण का कुर्बान अली खास के लिए इनायत अली खास के लिए झंडो मरी का चवन कुमार कोल्ही कुनरी का हाफिज सावल

तैयब थेबो खां हबीब लाइ थेबो ऐं ॻोठ मोलड़ माशी लॻे बकापुर खां ज़मीर हुसैन सोलंगी वफ़ा हुसैन ऐं मुख़्तार अली सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो ऐं फौजी इरशाद अली मैसर त समीन प्रोग्राम जे आख़िर में सभिनी दोस्तनि जे नाम कयूं पिया फ़ाइज़ अली जो ख़ूबसूरत नगमो गॾिजी पिया ॿुधूं।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by White.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
6: समय जख्मी थे ईरान जंग ते हर महीने टे अरब डॉलर्स खर्च की रहा है. सब
7: सीने की जलन तेजाबियत बदहजमी न्यूकेन. जब जलन हो सीने में न्यूकेन ले पीने में न्यूकेन बाय LCI.
6: ईरान इतने हथियार न तो चाहे तक 60 सैकड़ों मारण की जरूरत छो है. अमेरिकी नायब सदर ईरान से गाल जारी रखने की तस्दीक कर छी. परडे खबरू इदारे राइट्स के इंटरव्यू डींदे जेडी विनस है तो ईरान जो एटमी प्रोग्राम महदूद करण वारी सखलियों खातरियों काफी ना है. अमेरिका ईरान का अमली कदम चाहे तो अमेरिका मुहिदे लाए तैयार है पर खबर ना है ईरान में एटमी फैसला केर कर रो है.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

वो तो आम तौर लोग जिन लोगों की यहाँ सालगिरह है उनको कहेंगे मेरी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ अलग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. जी आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और चौबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं में गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखेर आगले जी आया नो सदसुल्लाह बोंजोर चाओ नी हाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुजार है.

हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, सहज को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुजार है।

प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे और प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा GFM88 के नाम से, जो कि फेसबुक के ऊपर आपको मिलेगा. और जी आप उसके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट आपको मिलेगी जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए.
0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम, अब आपकी खूबसूरती का फैन. वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेह में आहिन चावरन जो खूबियों एंड कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे, उन जी नमी के लॉक करे, एंड चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन एंड रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिन बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट। उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हेलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुखसार। आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी प्रोग्राम में तीन तरीके कार से। आप लोग मुझे अब कॉल भी कर सकते हैं। हमारा सेगमेंट होगा जो सुर लगाओ गाना सुनाओ, और सुर लगाओ गाना सुनाओ में हम आप लोगों से सुनेंगे एक अदद गाना। तो गाना सुनाने के लिए और कॉल पे आने के लिए आप लोगों को कॉल मिलानी होगी, तो कॉल कीजिएगा 03000113488 के ऊपर। इसके ऊपर कॉल करेंगे तो आप कॉल लगा पाएंगे, कॉल मिला पाएंगे और मुझसे बात कर पाएंगे और एक अच्छा सा गाना सुना पाएंगे। और इसके साथ साथ जी जो डेली बेसिस पे कॉल करते हैं तो डेली सैमसंग कॉलर्स आर नॉट अलाउड, इस बात का खास ख्याल रखते हुए आप लोगों ने कॉल करनी है। और साथ साथ आप लोग मुझे 888 पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं हमारे पेज के ऊपर। आपको पोस्ट मिलती है जिंदगी गुलजार है कि इसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे गाना कहाँ से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाफिज लक्ष्मी बात कर रहा हूँ।
0: हाफिज लक्ष्मी, आपकी कल कॉल लगी थी लेकिन आज लगा ली है दोबारा, तो मुझे गाना सुना दें जल्दी से और फिर अगले दो दिन तक कॉल नहीं लगानी, ठीक है? सॉरी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, प्लीज सही से बात करें, मतलब सही जगह पे जाके बात करें।
1: जी
0: काफी डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, मुझे बताएं कि गाना कौन सा सुनाएंगे?
1: ये गाना सुनाऊंगा वो प्ले करना।
0: ओके सुनाएं।
1: जी महबूब तो दिस मुखदर मोहजो आसिर बिन थे बदनाम बुझा महबूब तो दिस मुखदर मोहजो आसिर बिन थे बदनाम बुझा। जी ये जाना है।
0: ओके किसी को डेडिकेशन?
1: हाफिज सावर ढिलू साहब, शहर ढिलू साहब, मोहम्मद कासिम ढिलू साहब और सरदर्द साहिबा और मुस्कान साहिबा और जो भी सुन रहे हैं सबको सलाम।
0: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। और ये थे कॉलर 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे। ओके नेक्स्ट कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? हाफिज सावर भाई, कैसे ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: ये प्रोग्राम सुन रहा
0: हूँ। ओके गाना सुनाएंगे?
2: ये गाना सुनाऊंगा।
0: रोने धोने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है?
2: नहीं नहीं
0: सुना दें।
2: मशरत
0: मशरत ओके किसी को डेडिकेशन है?
2: आप लख मेरा
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और भाई का गाना हम प्ले करेंगे, काथे सखर काथे।

ओके जी, गाना हम प्ले करेंगे, गाना सुनते सुनते हम मजीद और बहुत सारे लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे. सो हियर कम्स अ सॉन्ग जो कि हमें भाई ने सुना दिया है, सुनते और आगे चलते हैं.

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ एक और कॉलर लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
1: आप बताइए।
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताओ कि प्रोग्राम सुन रही हो? ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है। अच्छा, मुझे बताओ कि गाना सुनाना है?
1: जी सुनाए।
0: तो सुना दे। अच्छा सा, रोने धोने वाला बिल्कुल नहीं।

0: ओके, लेकिन ये तो बॉलीवुड कंटेंट है, ये कैसे प्ले करूँ मैं?
1: अरे मुझे पता नहीं था वैसे सर।
0: चलो मैं अपनी तरफ से कोई प्ले कर दूँ अच्छा सा?
1: हाँ प्ले कर दो, मुझे डेडिकेट।
0: चले मैं प्ले कर देती हूँ। किसको डेडिकेट करेंगी?
1: मुझे।
0: मुझे
1: मुझे डेडिकेट कर
0: दो। अच्छा आपको कर दो, चले मैं आपको कर देती हूँ।
1: अच्छा दूसरा वाला सेगमेंट भी रख लेना
0: जी। कंटेस्टर वाले सेगमेंट आज करेंगे हम, और क्या करेंगे? हाँ आज करेंगे हम हरा भरा पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सरदर्द, अपना बहुत सारा ख्याल रखो।
1: अल्लाह
0: हाफिज़ जी, थैंक यू। ओके जी, इस वक्त हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ साथ मौजूद हैं नजीर भाई जो, वहीद भाई, शमन भाई, मुमताज भाई और दिलशाद भाई हमें सुन रहे हैं। आप तमाम लोगों को हम खुश आमदी कह रहे हैं जी प्रोग्राम में। आप हमें सुन रहे हैं इतने गौर से, इतने शौक से। नजीर भाई जो, वहीद भाई, शमन भाई, मुमताज भाई और दिलशाद भाई, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो।

आगे जी और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं और इसके साथ साथ जी मुझे जो स्पेशल डेडिकेशन आई है, असल में उन्होंने करनी है रिकॉर्डिंग, सो हम एक बार उनका फिर से नाम ले लेंगे जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नजीर धारी जो वहीद भाइयो, शमन भाइयो, मुमताज भाइयो और दिलशाद भाइयो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। आप तमाम लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में कि आप इतना शौक से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं जी। थैंक यू सो मच नजीर धारी जो, वहीद भाइयो, शमन भाइयो, मुमताज भाइयो और दिलशाद भाइयो, आपके लिए हम एक अच्छे से गाना भी प्ले करेंगे नुसरत फतेह अली खान की आवाज में, ठीक है जी। और ये हम मेरे ख्याल से प्ले भी कर देते हैं और प्ले करके हम जाएंगे न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों की तरफ, दोनों के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: قطر جي سالگي ۾ آمريڪا ۽ ايران جون ڳالهيون جاري آهن. ڳالهين کي نتيجن تائين پهچائڻ واريون کوششون بھی جاري آهن. قطري بدي وزارت جي ڊائريڪٽر ابراهيم بن سلم سلطان الهاشمي چيو آهي ته مڪي اتحاد خطي جي ملڪن جي وسيلن جي تحفظ ۽ استحڪام يقيني بڻائڻ لاءِ سهڪار کي وڌيڪ مضبوط ڪندو. ایران سان جنگ ۾ آمريڪا جا 81 جنگي جهاز تباهه يا متاثر ٿيا آهن. آمريڪا جي اڪانومسٽن جي ريسرچ سروس رپورٽ ۾ انشاف رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته آمريڪا جي تباهه يا متاثر ٿيل جهازن ۾ ويڙهاڪ جهاز، هيلي ڪاپٽرز، بغير پائلٽ فضائي گاڏيون MQ-9 ريپئر ڊرونز شامل آهن. سنڌوانا يا وزيرستان ناڻي جو माण्हू FIR दाख़िल कराइण में देर कंदा. वाना में बि माण्हू केस रिपोर्ट कराइनि था, सिंध में छो नथा अचनि? सुप्रीम कोर्ट जा सिंध में FIR दाख़िल करण में देर वारे केस ते सख़्त रिमार्क. सुप्रीम कोर्ट पारां FIR में शिकायत कंदड़ बदिरां दरख़्वास्त ॾींदड़ जो लफ़्ज़ इस्तेमाल कंदड़ जी हिदायत. ॿुधणी दौरान DIG सखर, नायब नासिर आफ़्ताब ऐं SSP खैरपुर अमीर सऊद मंगसी सुप्रीम कोर्ट में पेश थिया. पुलिस इख़्तियारनि IG सिंध जी हिदायत ते FIR में देर बाबति रिपोर्ट बि सुप्रीम कोर्ट में पेश कई. सिंध में FIR दाख़िल थियण में देर ते सुप्रीम कोर्ट पारां सिंध पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो. मंज़ूराबाद में ॿिनि धुरियुनि में झेड़े बाद हिकु धुर जो इंडस हाईवे ते धरणो. गोठ सूमर बुफत में ज़मीन जी मालिकियत तां झेड़े बाद औरतनि ऐं ॿारनि इंडस हाईवे ते धरणो हयो. मुज़ाहिरीन मूजिबि सत्तार ऐं संदसि माण्हुनि असां मथां हमिलो कयो आहे. जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे. नओं देरो में भुटा बिरादरी जे घर ते मुबैना हमिलो कंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज. सिकंदराबाद पाड़े वासी नवीद भुटो ऐं वहीद औरतनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाज कयो. मुज़ाहिरीन मूजिब जरवार बिरादरी जे हथियारबंदनि असांजे घर ते हमिलो करे तशदुद जो निशानो बणायो. जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे. ठुलवे जो चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़म्मती हथियारबंदनि जी फायरिंग. ॿ भाग्या ज़ख़्मी. ॻोठ पांधी खान खोसो में चोरनि जी फायरिंग में जूनसाल खोसो ऐं मुर्तज़ा ज़ख़्मी थिया. ज़ख़्मी खे लाड़काणे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो. ॻोठनि पारां जवाबदार गिरफ़्तार करे इलाइक़े में अमन बहाल कराइण जी मुतालबो कयो.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
6: सुपर वाइट.
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. ॿुधंदा रहो.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: इसमें फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है सुपर वाइट।

0: टोड़न जे सूरत सफ़ा मारे छजुआ
1: अदात ने जो इलाज छो न थो कराई
0: इलाज कराए कराए थक जी पियो आ
1: अदा इन सूर जो इलाज खात्मा दर्द दवा सा मुमकिन आहे मुमकिन आहे जी हां खात्मा दर्द एक एड़ी दवा जेका सूर खा दे निजात सूर चाहे जोड़न जो हुजे पठन जो हुजे जेल जो हुजे या घंटिया जो कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कहीं भी नंढे वडे सूर जे लाए आजमूदा दवा आहे सतन बीहन जी दवा सिर्फ 450 रुपयन में खात्मा दर्द मिलन जो हंध बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामो अल नूर दवा खाना रोहड़ी राब्ते जे लाए 0305-58-00-616 44 सालन जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश ऐं बेन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 बजे खां शाम 5 बजे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03 26 22 00 404

0: Hi guys, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार हैं और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं. हमारा सेगमेंट है हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसमें आज हम मौजूद हैं एक और सेगमेंट के साथ और एक और नए गेस्ट के साथ. तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि हमारे साथ ऑनियर होंगे अब से कुछ देर बाद, जो कि हैं मिस्टर अब्दुल रऊफ, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद होंगे. और इनका तारुफ मैं आपसे करवाती जाऊं. मिस्टर अब्दुल रऊफ जो कि PhD स्कॉलर हैं, कॉलेज ऑफ प्लांट साइंस वाजोंग, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वुहान चाइना से इनका ताल्लुक है जी. और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. इनको कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इस खूबसूरत अंदाज में मेरा तारुफ करवाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं.
0: ओके जी, मिस्टर अब्दुल रऊफ, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ हमारे सेगमेंट में इस वक्त मौजूद हैं.
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका. आपने मुझे इस ये मौका दिया, मैं अगेन आपका शुक्रगुजार हूँ.
0: ओके जी, मिस्टर अब्दुल रऊफ, हमें बताइएगा इस मतलब कि स्पेशल टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक पौधा एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान. तो आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना, एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान, इस उन्वान के पीछे असल सोच क्या है? क्या एक छोटा सा पौधा वाकई एक बड़ी माहौलियाती सोच की शुरुआत बन सकता है?
1: बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ कि एक पौधा अकेला क्लाइमेट चेंज तो मतलब कि उसको प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाता, मगर एक पौधा इंसान को इन्वायरमेंट समझने के लिए पहला प्रैक्टिकल मौका जरूर देता है. जैसे हम हॉर्टिकल्चर में कहते हैं कि जो प्लांट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, एक लिविंग सिस्टम है. अगर आपको वो जाहिर सी बात है सनलाइट यूज करता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी एटमॉस्फेयर में वो रिलीज करता है, उसे बारिशें होती हैं तो शेड क्रिएट करता है, तो आसपास के जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है, तो वो आपकी एक सोच को डेवलप करने में बहुत किरदार अदा करता है. और अगर एक छोटी सी सोच हर इंसान के अंदर आ जाए तो वो मिलकर पूरे इन्वायरमेंट को आखिर में चेंज कर सकता है.
0: ओके जी, तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम और माहौल बहुत मुख्तलिफ है. आम आदमी अपने बालकनी या गली या दुकान से माहौल के लिए क्या अमली शुरुआत कर सकता है पौधों को लेकर?
1: बिल्कुल, मैं आमतौर पर यही कहता हूँ कि पहला काम प्लांट खरीदना नहीं है, बल्कि आपको उस जगह को समझना या पढ़ने की कोशिश करना है कि जहाँ पे आपने ये सब काम करना है. देखिए, हम देखते हैं कि धूप कितने घंटे आती है, हवा का रुख क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी उसमें क्या है, फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है. तो फिर उस जगह के मुताबिक हम प्लांट को चूज करते हैं. छोटी बालकनी है तो कंटेनर या पॉट्स में हम जो है धूप वाली जगह पर सूटेबल

0: प्लांट्स को रख सकते हैं, क्लाइंबर जैसे हम बेलें जिनको कहते हैं वो हम लगा सकते हैं छोटे बड़े कंटेनर। तो पानी बचाने के कभी भी मुमकिन तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपनी बैल्कनी यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारी बैल्कनी को भी पानी के सीपेज की वजह से नुकसान हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमें कितना पानी और किस वक्त पानी प्लांट्स को देना है ताकि उनकी जरूरियात भी पूरी हो और हमारा जो मकसद है एक एनवायरनमेंट को बेटर करने का वो भी हमारा पूरा हो जाए।
1: बिल्कुल जी। अच्छा, हमें ये भी आप बताइएगा कि साथ साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है और साया और सब्जा हमारे आसपास के छोटे माहौल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं।
0: जी, माइक्रो क्लाइमेट सादा अल्फाज में मैं आपको एक बता सकता हूं कि एक छोटी सी जगह पर आपका मौसम कैसा है, इसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। टेक्निकली तौर पर हम टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी, हवा और सनलाइट या रेडिएंट हीट को भी देखते हैं कि उस एरिया में या उस छोटी सी जगह में कितना इन चीजों का असर है। धूप में अगर आप जो है वो टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा। तो प्लांट दो इम्पोर्टेंट काम करता है, पहला शेड, फिर उस जिससे सरफेस डायरेक्ट सनलाइट से बचाती हैं, और दूसरा जो है ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन का मतलब है लीव्स के थ्रू जो है वो हमारा लीव्स के थ्रू पानी जो है वो एनवायरमेंट में जाता है। तो वो एक पूरा माइक्रो क्लाइमेट जिससे ना सिर्फ गर्मी कम होती है और जो है माहौल बहुत हमें कंफर्टेबल महसूस होता है।
1: अच्छा, आप हमें बताइए क्या हर इलाके में एक ही किस्म का पौधा लगाना सही है?
0: नहीं, हॉर्टिकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि राइट प्लांट राइट प्लेस। पाकिस्तान में कोस्टल एरियाज हैं, एरिड एरियाज हैं, यानी हमारे पास मैदानी एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इसके अलावा सब ट्रॉपिकल है, फिर हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज में जाहिर सी बात है स्नोफॉल वगैरह होती है, तो हमारे पास बहुत अच्छा जो है ना इन्वायरमेंट है, हर तरह का इन्वायरमेंट है। हम प्लांट सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट ये बात मैं कह रहा हूँ, उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस देखते हैं कि अगर वो हम मुल्तान में लगा रहे हैं या कराची में लगा रहे हैं तो वहां पर इस प्रकार का टेम्परेचर ज्यादा है, या सिंध में लगा रहे हैं तो पानी और टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, सनलाइट देखते हैं, फिर सॉइल टाइप क्या है, हमारी मिट्टी की किस्म क्या है। फिर जाहिर सी बात है हम यहाँ पर बात क्रॉप्स की नहीं कर रहे, तो जो शेडी प्लांट्स हैं या जो माहौल को खूबसूरत बनाने वाले प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम अपना इलाका भी देखते हैं कि उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, तो उसमें कौन सा प्रॉपर प्लांट हमें लगाना चाहिए। कि एक ट्री लगाते वक्त हम ये भी हमें सोचना होता है कि 10 साल के बाद उसकी कैनोपी यानी उसका जो एरिया है पत्तों का और रूट्स कहाँ होंगी, क्या जो हमारे पास ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं रूट्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए, पानी रेगुलर उसको कितना मिल सकता है। तो अच्छी हॉर्टिकल्चर वो नहीं है जो प्लांटिंग के दिन अच्छी नजर आए, अच्छी हॉर्टिकल्चर वो होती है जो 10 साल बाद भी सही जगह पर हेल्दी खड़ी हो और हमें वो फायदा दे रहे हो प्लांट।
1: अच्छा, साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि पाकिस्तान में जब हम पौधे का इंतखाब कर रहे हो लगाने के लिए, तो उसका इंतखाब करते वक्त मकामी आबो हवा, पानी की दस्तियाबी और जगह को कितनी अहमियत देनी चाहिए?
0: बिल्कुल, ये तो सबसे अहम चीज है। अब जाहिर सी बात है एक पौधा जो है, सादा मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं अपने लिसनर्स को, कि अगर हम एक सेब का पौधा जो कि पहाड़ी इलाकों में ग्रो होता है वो मैं अगर मुल्तान या कराची या सिंध के कुछ इलाकों में या बलूचिस्तान में खुश्क एरियाज में लगाऊंगा तो वो नहीं ग्रो करेगा। तो एक प्लांट को सिलेक्ट करते वक्त हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि वो प्लांट हम खूबसूरती के लिए भी चाहिए, शेड के लिए भी चाहिए, या फ्रूट के लिए लगा रहे हैं तो कौन सा उसका इन्वायरमेंट बेटर है ताकि वो हमारे पास सस्टेन कर सके। तो उससे हम जो है सिलेक्शन फिर करते हैं कि वो हमारा शेड का पर्पज है, खूबसूरती का पर्पज है, और क्या वो हमारा फ्रूटिंग का पर्पज है, वो हमारा पर्पज क्या है, गली में लगाना है, घर में लगाना है, कहाँ पे लगाना है। तो जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें सॉइल देखनी होती है, टेम्परेचर देखना होता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम देखना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी रूट्स जो है जड़े वो जमीन में जाएंगी तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम, इससे मुराद ये है कि वो हार्डी प्लांट, मुराद ये कि वो सख्त इन्वायरमेंट में जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग

0: वजह से बहुत टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, यहाँ पे फ्लडिंग वगैरह भी बहुत होने लग गई है, अचानक बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो सब देखते हैं कि अगर वो हार्डी प्लांट है वो सस्टेन कर सकता है, और हमने ऐसे पौधों को सिलेक्ट करना है। अगर मैं बिल्कुल एक सर्कुलर प्लांट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जो कि किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर उसका फायदा भी हमें उल्टा नुकसान है कि हमारे पैसे भी जाया हो रहे हैं और हमारा जो है वक्त भी जाया हो रहा है, रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे एक या दो पौधे लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो आप इस सोच को किस तरीके से देखते हैं और छोटी शुरुआत की असल अहमियत क्या है, ये जरा हमारे सुनने वालों को बताइएगा।
0: जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे एक या दो मतलब के प्लांट लगाने से के क्या फर्क पड़ सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जनरल सवाल है। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि दो पॉट से पूरे शहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा या उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन हम जो है हॉर्टिकल्चर में देखते हैं कि लोकेशन हमारे पास बहुत मैटर करती है। अगर वही दो प्लांट्स किसी कमरे के डार्क कॉर्नर में रखें तो एनवायरमेंट इफेक्ट लिमिटेड होगा, लेकिन अगर वही सूटेबल लार्ज सोलियन बड़े पत्तों वाले पौधे जैसे हमारे पास रबर प्लांट्स हैं, जो डेकोरेशन इनडोर प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, वो हम ऐसी जगह पर बैल्कनी में रख लें या विंडो के आसपास रख लें, तो और इसके अलावा जो है बैल्कनी में अगर बड़ा कंटेनर रख के कोई बड़ा जो है वो प्लास्टिक का कोई ड्रम टाइप चीज रख के, आजकल तो बैग भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे, उनमें जो है अगर हम एक क्लाइंबर यानी एक बेल लगा लें, तो वो ना सिर्फ हमारे जो है घर को खूबसूरत बनाएगी बल्कि वो अंदर के एनवायरनमेंट को टेम्परेचर को कम बहुत इफेक्ट करती है, बहुत कम करती है। अक्सर आपने पोस्ट भी देखी होगी डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे कि लोगों ने शेयर किया होती है कि चलते रोड पे या बहुत जहां पे खुशहाली है या रोड है या गली है जहां पे बिल्कुल कोई दरख्त नहीं है वहां का टेम्परेचर हाई होता है, जबकि एक दरख्त के नीचे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वही क्लाइंबर जो है वो हमारे रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा बना देती है। इसी तरह जो है और प्लांट है न सिर्फ हमें जो है शेड दे रहे हैं या खूबसूरती दे रहे हैं, बल्कि वो हमारे अंदर का जो इंसान है उसको भी खुश रखते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
1: ओके जी। अच्छा, अगर किसी के पास लॉन ना हो या कोई ऐसी बड़ी जगह ना हो जहां पे पौधे लगाए जा सकते हों, तो क्या इंडोर पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे बालकनी में लगा लिए, छोटे गमले, छत पर पौधे या दुकान के बाहर, तो इस चीज को जरा सा बताइएगा कि किस तरीके से हम इंडोर प्लांटिंग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन हर जगह का जैसे आपने मुख्तलिफ जगह का बताया तो हर जगह का पर्पज हमें अलग से समझना होगा। अब इंडोर प्लांट्स में हम अगर ये बात करें कि कुछ हमारे पास इंडोर प्लांट्स हैं और हमें जो है इतनी सख्त गर्मी में किसी को अगर एयर कंडीशनर या एयर प्योरीफायर की जरूरत है, तो ये पौधे तो उनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे छोटे पौधे हैं, बालकनी में है या रूम में है या किसी ऑफिस में है। लेकिन वो जो है इंडोर प्लांट्स हमारे एक विजुअल कंफर्ट और इंसान की नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं और इनको बहुत अच्छा बना देते हैं। फिर जैसे मैंने पहले भी बात की कि माइक्रो क्लाइमेट जो हमारे बैल्कनी का है या कोर्ट यार्ड का है या हमारे पास टेरेस का है, तो ये भी जो है वो इंटरेस्टिंग लोकेशन हमें देता है, और इसी पे जो है बहुत खूबसूरत जो है वो प्लांटिंग हो सकती है और इससे जो है बहुत अच्छे पौधे उग सकते हैं। जैसे हमने आजकल महंगाई है और बाकी चीजों पे भी हम देखते हैं, तो हम घर की बैल्कनी में या घर का छोटा सा जो कोर्ट यार्ड है या लॉन है उसमें हम अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। उससे न सिर्फ हमारा जो है एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी, हमें जो है फिर डिफरेंट सब्जियां भी मिल सकती हैं, छोटे फ्रूट्स भी मिल सकते हैं, और इससे जो है फिर वही बात आ जाती है कि आपका पर्पज क्या है प्लांट लगाने का, और उससे हमें फिर जो है सिलेक्शन करनी पड़ती है, और हर क्लाइमेट के लिए या हर इलाके के लिए अलग प्लांट्स जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। अगर आपने इंडोर लगाने हैं तो जैसे रबड़ प्लांट है या डिफरेंट टाइप के कैक्टस प्लांट्स हैं, वो बहुत अच्छा एक तो इन्वायरमेंट बना देते हैं, और दूसरा फिर बैल्कनी में अगर आप आए तो हम कोई क्रीपर लगा सकते हैं, कोई बेल लगा सकते हैं, तो ये चीजें इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट करती हैं। और फिर एक दो पौधे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा मोहल्लेदार है या कोई शॉप पे आने वाला बंदा है वो देखता है, मेरे ऑफिस में आने वाला बंदा अगर वो देखता है उसको खूबसूरत लगता है, तो उसके अंदर एक सोच डेवलप हो सकती है कि मैं भी लगाऊं, और इस तरह करते करते वही बात के कतरे कतरे से जो है वो दरिया बनता है, तो लोग इकट्ठे करते जाएंगे तो माइक्रो क्लाइमेट जुड़ते जाएंगे तो एक ओवरऑल क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल जी। अच्छा, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, और लास्ट में हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सोच के साथ कि एक पौधा, एक सोच और एक बेहतर पाकिस्तान?
0: जी बिल्कुल, मैं एक यही पैगाम देना चाहूंगा कि एक पौधा, एक सोच, एक बेहतर पाकिस्तान का मतलब मेरे लिए यही है कि हरियाली को सिर्फ डेकोरेशन पे न देखें, आप अपने लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको समझना चाहिए कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें अपने लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी डेली की रूटीन में इसको शामिल करना होगा, तो जाकर हम जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से कुछ ना कुछ जो है वो मुकाबला कर पाएंगे, और ये हमारे हमारी अब की जरूरत भी है। हीट वेव आती हैं, डिफरेंट जो है वो आपने देखा होगा कि बारिशें एकदम जो है अनइवन हो रही हैं, ये इन चीजों के लिए हमें प्लांटिंग लगानी होगी। जैसे यहाँ पे चाइना में, मैं यहाँ फाचोंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं, अगर मैं आपको दिखा सकता तो रोड के ऊपर भी प्लांट्स लगे हुए हैं। हम सोचते हैं कि रोड के ऊपर प्लांट्स के वो नहीं लग सकते, ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर कुछ लोग समझते हैं कि एक प्लांट लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, आप लगा कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है। तो यही पैगाम देना चाहूंगा कि हमें जो है वो प्लांट्स को अपने लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करना चाहिए।
1: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ के आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस।
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। तो आज का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है और हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: अरे नहीं, खुश्क और बेरोनों की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जहे में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल बीहन में, जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती, हर हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का. और आप सुन रहे हैं एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ हम लेंगे आप

आपकी बहुत सारी लाइव कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस जिन लोगों ने कमेंट कर दिए हैं, मैं देख रही हूँ शिकायतों वाले कमेंट सबके देख रही हूँ। अच्छा, स्मार्ट किशोर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मैं वहाँ लाइव पे ढूंढ रहा था आपको, यहाँ आप छुप कर शो कर रही हैं। हाँ जी, मैं छुप छुप के शो कर रही हूँ। और कहते हैं कि वो शो खत्म हो गया, वो शो खत्म नहीं हुआ, असल में वेनसडे को उसका ऑफ होता है और वेनसडे को हमारा एज इट इज जैसे जिंदगी गुजार है प्रोग्राम हुआ करता था वो होता है, ठीक है।

0: अच्छा आज का टंग ट्विस्टर है कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी, ये कहना है ठीक है, कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी, कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी, इसको कह के दिखाएंगे और जो ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को। ठीक है जी, 15 मिनट है ऑलमोस्ट मेरे पास, ठीक है जी, तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है हम आप लोगों की लाइव कॉल्स ले लेंगे और ये बोलते बोलते हमारे पास 13 मिनट रह चुके हैं। खैर हम चलेंगे आगे और गाना एक और प्ले करूं, इसी गाने के साथ हम कॉल लेना शुरू करें 03000113488, इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग। कच्ची खीरे की कच्ची ककड़ी ये कहना है, कॉलर लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: शिकागो से जमालदीन भाई।
0: जमालदीन भाई कैसे, ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे? तो बोले कली कच्ची नहीं, कच्ची कच्ची ककड़ी, कली कच्ची नहीं, कच्ची ककड़ी, कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी,
1: कच्चे खीरे की कच्ची।
0: ओके ओके, जमालदीन भाई भाई बात कर रहे हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके, और कुछ कहेंगे?
1: माशाल्लाह बच्चों के आप माशाल्लाह लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
1: धन्यवाद।

कमेंट आया है जो सॉन्ग सरदर्द ने गाया, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था और सिंगर भी, और मैं कल कोशिश करूंगा यही सॉन्ग गाऊं अगर कॉल लग गई तो। चले ठीक हो गया, डन हो गया।

अच्छा आज का तंग चश्मे किसने अच्छा अच्छा बोला है? वो बोला मेरे जमालुद्दीन भयो ने और आसिफ अली चाचा ने. काफी अच्छा टंग चश्मे बोल दिया और कहे गए. और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है और मैं जल्दी से चली जाऊंगी. सो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजी. सुनना मत भूलिएगा जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लुक सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजी रुखसार. साइन आउट. टेक केयर. गुड बाय. अमान खुदा. अल्लाह हाफिज़.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: White Ash Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स
7: पाकिस्तान ऑपरेशन से सिक्योरिटी फोर्सेज के बेटा पेश की गई जमनी हुसैन पारा रियाज ए किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अबाज एयरपोर्ट के मिसाइल जरिए निशानो बनाने की दावा उसी विड़ाकन मौजूद सऊदी के पुलिस मुस्तैक बे एयर बेस के निशानो बनाया है सऊदी अरब हुसैन के हमलन की तस्दीक न कई रियाज के दखण में मिसाइल के नाकारा बनाने की दावा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सदारत हेठ सऊदी काबीना जो इजलास यमन के आइनी हुकूमत से सहकार जारी रखने वाले अजम जो वर्जाओ काबीना इजलास में खिते समेत आर्मी सूरतयाल जो जायजो वरतो वो मगे दिफाई मुआहदे की कमेटी इजलास के नतीजन की साराह खिते में मसलन के हल सफातकारी से जोर दिनो वो इन वक्त खबर ना है ईरानी हुकूमत ए मुल्क जो इंतजाम केर हलाए रो है ईरान जे बे नंबर कयादत भी खत्म थी चुकी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है ईरान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है खबर ना है ईरान के केर हलाए रो है अमेरिकी नायब सदर जे डी वेन है वॉशिंगटन ईरानी सदर ए परदेही वजीर से राबते में है जंग के खात्मे लाइ यूरेनियम जो रचाव घटाने वा वायदा काफी ना तहरान के यूरेनियम के रचाव में वाजे घटाई करनी पवंदी।

0: भाई के बगैर।
1: क्रंच करोगे?
2: क्रंच
3: के नतीजन ताई पहुंचाने वाली कोशिशों भी जारी हैं। कदरी बने वजह भारत के डायरेक्टर इब्राहिम बिन सुल्तान अल हाशमी है तो मकेताज इत के मुल्क के वसीलन के तहफुज इस्तेकाम यकीनी बनाने ला सहकार के मजबूत कद। ईरान से जंग में अमेरिका जहा 81 जंगी जहाज तबाह या मुतासिर थे। अमेरिका के कॉन्शियल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट में जाना वो है अमेरिका के तबाह या मुतासिर थे जहाजन में वेड़ाक जहाज हेलीकॉप्टर्स बगैर पायलट फिजाई गाड़ियों MQ-9 ड्रोन शामिल हैं। अमेरिका ईरान जंग पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर अफ्रीका ए विच ओभर के मुल्क की आबादी के मुतासर किया है। खिते में मौजूद इंतहाई गरीबन में अद गरीब पाकिस्तान में रहन था। आर्मी मालियाती इदारे IFM जी नई रिपोर्ट में सरकारी इंकशाफ IMF रिपोर्ट में खिते में जारी तकरार से तेल जो कीमतू व्यून महंगाई सबब गुर्बत में भी वाधी है। खिते में मौजूद गरीबन में 48% पाकिस्तान में आन अफगानिस्तान शाम ए यमन में भी गुर्बत वधी है।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
7: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
8: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
9: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
8: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
9: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
10: सुपर वाइट
11: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306-244-7700।
12: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

जी आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में आप लोगों को बताया जाता है और क्यों बताया जाता है ये चीज भी बड़ी मायने रख रही होती है। अगर आप अपने समझ नहीं आता कि तो आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों के चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी चीजें हैं गैर जरूरी चीजें जो आपके चेहरे को इरिटेट कर रही होती हैं आपको जरा परेशान कर देती हैं तो उन तमाम चीजों से आप लोगों को रिलीफ दिला सके और आप लोगों को बता सके कि भाई यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना जबरदस्त रोल होने वाला है जब आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐड करेंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है। अगर आप भी चाहते हैं इस्तेमाल करना तो जल्दी से जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूम लीजिए और परचेज करते जाइए। उनके अलावा आज जो प्रोग्राम जो टॉपिक थे हमारा है यानी कि आज के प्रोग्राम का जो सवाल आप लोगों से पूछो वो क्या होने वाला है तो आज ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ जाता ना कभी कभी जैसे बिल्कुल वही वाला ख्याल मुझे आया। मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए कि आप मुझे बताएं आज कि ये जो मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ बहुत ज्यादा वाली बातें रोज रोज बताती हूँ डेली डेली बताती हूँ तो आज आप मुझे जरा ये बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना ये जो वाइटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट फार्मुलेशन है इसका क्या रोल है। हाँ जी आप लोगों ने इतना ज्यादा सुन लिया है मुझसे आज जरा आप लोग मुझे बताएं कि ये जो विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं इनका क्या रोल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये आप मुझे बताने वाले हैं। जिन लोगों ने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज किया है ना वो तो मुझे इसे फट से बता देंगे कि भाई उनको पता है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते तो आपको रिजल्ट कैसे शानदार से मिलते हैं। तो आज आप लोगों की बारी है सारे लोग मुझे बताइए कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो हैं इनकी क्या क्वालिटीज है और ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम के क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनका अलावा अगर तहां से प्रोग्राम जो थे चाहे था शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के उठाइए टाइप कीजिए एल आर के सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1 पर। अगर हम मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा वहां पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम के लाइव पोस्ट मिल जाते हैं जिसे आप लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए।

0: और शेयर ज्यादा किया करें। शेयर करने से ऐसा होता है, शेयरिंग इज केयरिंग तो होती ही होती है, लेकिन शेयर करने से हमारी जो पोस्ट है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाती है और हम बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आप सब लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसके अंदर वो तमाम चीजें ऐड की जाती हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारी खूबसूरती सिर्फ बढ़नी चाहिए तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फार्मूले की अगर बात करें यहाँ पर तो ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। और बिल्कुल आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछ लिया है वो उसका जवाब आप मुझे बताएंगे कि ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं इसका क्या रोल है, इसका क्या काम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। और हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करना, ये आप लोगों का काम होता है। अच्छा, जीन अली हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं कि जो हमारे हिस्से का है वो कभी ना कभी हमारे पास खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही लिखा है। और लिखते हैं कि कोई भी तकलीफ हमेशा नहीं रहती, हम हाँ जी ये अल्लाह का वादा है, तुम बस सब्र रखो और अच्छे वक्त का इंतजार करो। बिल्कुल आपने सही लिखा है जेन। और जेन आप मुझे बताएं, आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर ली या फिर अभी तक आप सिर्फ खाली प्रोग्राम सुन रहे हैं? भाई आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। अच्छा, हमारे साथी नजीर खोसू भाई हमें बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, लिखते हैं कि हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए तोड़ने की नहीं, दुनिया में सुई बनकर रहिए कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। ओके जी, जबरदस्त हो गया। यासीन खंडा में सुन रहे हैं, कहते हैं हाय कैसी है तबियत आपकी रोजाना की तरह, आज भी आपका शो वेरी वेरी नाइस ब्यूटिफुल है, थैंक यू वेरी मच यासीन खंडा। अहद जरवारों में सुन रहे हैं, अहद भाई वालेकुम असलाम के साथ आपको वेलकम कहते हैं। तारिक भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलम तारिक भाई। और तारिक भाई लिखते हैं कि अदी हाँ जी अदी, मैं आज अहमद भाई के साथ हूँ, अहमद ट्रेडर्स तारिक रोड जेकब आबाद में, इनकी शॉप है, हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज हम डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान आए हुए हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करवाने आए हैं। क्या बात है जी, अब तो बलूचिस्तान के लोग भी रेडी हो जाए क्योंकि आप लोगों के लिए भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो जितने भी बलूचिस्तान के लोग हमें सुन रहे हैं वो सारे लोग भी भाई जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश परचेज करते जाइए। और जी अब्दुल जी केसर हमारे साथ है, अब्दुल जी केसर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। जवाहर मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वेलकम हो गया। रिजवान अली हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। अल्लाह दिना भाई कश्मोर से हमें सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं भाई को। और हमारे साथ है गुड आफ्टरनून, हेलो सिद्रा जी, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके जी, कराची वालों को भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सहूलत हमने मयसर कर ली है, अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करना चाहते हैं तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कीजिए और नाम लेकर तलब कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको नाम आना चाहिए, वैसे तो कुछ लोगों को नाम नहीं आता अभी तक, लेकिन आपको जो इतना बताती हूँ ना तो वो इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद हो जाए और आप अगर मार्केट चले जाएं तो आप लोग सही से नाम लेकर सही वाला प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, नाम ही काफी है। अच्छा, रिजवान लिखते हैं मुझे पसंद है इत्र की खुशबू, पर उसकी गली की क्या बात है तो सुरूर कोयल भी अच्छा, पर उसकी निदा की क्या बात है, दुनिया में है बहुत समंदर गहरे गहरे, पर उनकी आंखों की क्या बात है तो चांद भी कितना हसीन, पर तेरे हुस्न की क्या बात है, दुनिया में है रेशम कितने नरम नरम, पर तेरी कलाई की क्या बात है। क्या बात है जी, क्या बात है। दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप बताओ स्वीटी कैसी हो। अबू हनीफ अल बलोची भाई हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून। नसर मोहम्मद भट्टी भाई हेलो, कहाँ से सुन रहे हैं जी? मटियारी से सुन रहे हैं मुझे लग रहा है। और मास्टर मंजूर का गाना सुनना चाहते, पहले मुझे ये बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करी या नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करो फिर आप लोगों की फरमाइशें लगा दूंगी। और वासे भाई हमें सुन रहे हैं, कहते मुझे प्यारी भेण सलाम, वालेकुम असलम, ठीक है तामदाय की आयो। अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी, सॉन्ग जी फरमाइश कया सोने भा, डेडिकेशन तवाजी बनी थी। अजहर लगारी, आकिब लगारी, अनवर लगारी, अब्बास लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, अली रजा भाई भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी रहे हो आहे सो अवां भी लगायो जिन जिन अञा ताईं कोन वरती आहे। यासिन खान कहते कि मैं भी दो या तीन दिन में छुट्टी पर जाऊंगा अपने शहर लख रोड में, तो आप वहां से जी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करेंगे या फिर आप यहां से लेकर जाएंगे। और हमारे साथी जी महर इरफान सियाल साहब कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, वी आर लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम मुल्तान। क्या बात है सर जी, आपको वेलकम हो गया। और मुलाजिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। और दर्दी दिल लिखती हैं कि गम हमेशा के लिए नहीं आते, रात जितनी भी गहरी हो रोशनी अपनी राह ढूंढ ही लेती है। सबर का दामन थामे रखें, अल्लाह बेहतर वक्त पर बेहतरीन से नवाजेगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। चाचा खालिद आ चुके हैं, हेलो। और मोहम्मद जमान भाई गुड आफ्टरनून, कैसे हैं, ठीक ठाक है। और ऐसे ही आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और जरा अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। टाइम हुआ है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने का, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, अपनी जगह से मत हिलिएगा और टॉपिक को फॉलो कीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये कमाल है जनाब कि आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है और आप हसीन जवान और खूबसूरत होते जाते हैं, तो लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

غلام کیے باشم

हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। पोस्ट को लाइक और शेयर जो लोग करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को बताना है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाना है। यासिन खान भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, और एसन अरवाणी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम, मदद कहते हैं, ओ माई फेवरेट आरसी मैडम मुस्कान जी कैसी आप, वेलकम कहते हैं आपको दिल से, आपको भी दिल से वेलकम कहते हैं जी, क्या याद करेंगे। और मीर मुमताज अली जदोई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, ये शो इज वेरी वेरी नाइस। वोट आगा खान जतोई लाड़काना से आप हमारे साथ मौजूद है। मुमताज अली जतोई भाई आपको भी खुश आमदीद। किशोर भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम अदा, किशोर हाजरा तवंजी महफिल में, किशोर भाई के चौथा भली करे आया किशोर भाई। अब्बासी भाई लिखते हैं कि सिद्रा योर स्माइल इज ब्यूटीफुल, थैंक यू अब्बासी भाई। और हमारे साथ हैं सी निजाम अली भट्टी, निजाम मोहम्मद भट्टी भाई वालेकुम असलम फ्राम मटियारी से आप हमारा शो सुन रहे हैं, कहते तमाम बेहतरीन शो है, जबरदस्त अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना लगाइएगा। जी जी बिल्कुल, अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना आपको में सुनाएंगे। वहीं भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम अदर, अदी ठीक है, तुम बुधा कहीं आए हो, मजे में आए हो। ऐसन कहते हैं टाइम का तो पता ही नहीं चला एक, हाँ भाई क्या मतलब आपके यहाँ अभी सूरज निकला है। हमारे यहाँ तो दोपहर हो चुकी है। उनका अलावा फहीम भाई तमा लिंक शेयर किया, ओके तमाम जो गानों अलगदा सी। और अलीशा हमारे साथ हैं, प्यारी अलीशा क्या कहती हैं, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, क्या बात है जी। और मुझे बताएं अलीशा, आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर चुकी हैं, आपको कैसा रिजल्ट मिला है? और लिखती है कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और आपने नूरजहां और अच्छा ये शायरी लिखी है, मैं कहा नूरजहां का गाना सुनना चाहती हैं आपको। चलिए आपकी शायरियां बिल्कुल शामिल प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन मेरे पास गाने भी हैं तो साथ साथ हम जरा गाने भी एंजॉय करते रहें। और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक करते नहीं है भाई पोस्ट को, इतनी कंजूसियां आखिर किस बात की? क्या मतलब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी नहीं लगा रहे हैं, इतनी कंजूसियां किस बात की? इतना पैसा बचाए छा तो आप बगला ठहरेगा न बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वटी जो खूबसूरत रहो, आई खुश रहो।

आप लोगों से पूछ लिया है कि मुझे बताएं ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, तो इसका क्या कमाल है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर? आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की भी एडिशन रखी गई है ना, तो इसका क्या रोल होने वाला है ये आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो डेली आप लोगों को बताती हूँ। आज आपकी बारी है कि आप भी मुझे बताइए, मुझे पता चले कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो कितना गौर से मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, या फिर ऐसा वाला सीन है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर नसीम मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं कि जी अदी लगायूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो त मां त चवां थो जेके भी ॿुधंदड़ आहिनि उहे भी इस्तेमाल कनि, पप्पू थी वेंदा। अल्लाह वाह जी ॻाल्हि कई अथव, ॿुधो था न तव्हां सभु लॻाए बाबा नसीम मोहम्मद भट्टी जीअं तव्हां बि पप्पू थी वेंदा। और अलीशा कहती है कि नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। आपने तो गाने लिख दिए जी हमारी पोस्ट पर, कहती मेरे लिए हर खुशी का मतलब आपका साथ होना है। बहुत शुक्रिया अलीशा प्यारी स्वीटी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है नहीं ये भी साथ साथ बताते रहिए। और वास्तव भाई लिखते हैं कि तेरी सादगी तेरी आजजी तेरी हर एक अदा कमाल है, मुझे फख्र है मुझे नाज है बस मेरा यार बेमिसाल है। क्या बात है जी, क्या बात है। इकबाल भाई हमें सुन रहे हैं लेट सोनो खान लाशारी, मीरपुर खास से सुन रहे हैं बाजी सिद्रा, नाइस योर शो, थैंक यू। अच्छा हसनैन रजा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम हसनैन रजा, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम थारो शाह से सुन रहे हैं। ओके जी, थारो शाह में आपको पता है ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी थारो शाह में अवेलेबल करा रखी है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो जितने भी थारो शाह के लिसनर्स हैं वो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, ना सिर्फ आप खूबसूरत हो जाते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी हो, वो स्किन ब्यूटी क्रीम फार्मूला है। तो कोई टेंशन नहीं, कोई जरूरी, ना सिर्फ आप खूबसूरत हो जाते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी हो, वो स्किन ब्यूटी क्रीम फार्मूला है।

प्रोग्राम सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं आपको भी। और अब्दुल गफार भाई थैंक यू, केशव माइक्रोसॉफ्ट पढ़ियो आज, सच में माइक्रोसॉफ्ट पढ़ियो तो चलो मुझे बताएगा चाहूंगा

लाइक और शेयर करते रहिए और वहीं भाई कहते हैं कि आंखें खराब हो गई बच्चों को पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। जीते जी अपने बाप को ऐनक नहीं देते खरीद कर, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ओके वफा ममताज अली कोसो भाई हमारे साथ मौजूद।

आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद वफा मुमताज अली खोसो कलंदर बख्श खोसो वालेकुम अस्सलाम शो तमाम लाजवाब आए थैंक यू प्यारा भाई पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और यहाँ पर टाइम हुआ है जी लेते हैं न्यूज ब्रेक उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे बात ही जल्दी आप लोगों के पास सुनते रहिए और साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड दी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics.
6: कतर जे साल से में अमेरिका ईरान जो गालियों जारी आन गालियों के नतीजन तई पहुंचाने वाले कोशिशन के भी जारी रखे हुए है। कतरी परदेही वजारत के डायरेक्टर इब्राहिम बिन सुल्तान हजमी चवा है तो मके इतिहादी खते जे मुल्कन जे वसीलन जे तहफुज इस्तेकाम यकीनी बनाने ला सहकार के वधिक मजबूत कंदो। अमेरिका ईरान जंग पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर अफ्रीका ए विच ओभर के मुल्कन की आबादी के वधिक मुतासिर कयो आहे। खिते में मौजूद इंतहाई गरीबन मां अध गरीब पाकिस्तान में रहन था। आलमी मालियाती इदारे IMF जी नई रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकशाफ IMF रिपोर्ट में चयो वयो आहे त खिते में जारी तकरार सां तेल जी कीमतू वधियूं आहिनि। महांगाई सबब गुर्बत में भी वाध थी आहे। खिते में मौजूद गरीबन मां 48% पाकिस्तान में आहिनि। अफगानिस्तान शाम ऐं यमन में बि गुर्बत वधी आहे। जबनी हुसैन पारां रियाज जे के खारिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं अबाज एयरपोर्ट खे मिसाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा हुसी विड़ाकनि मौजूद सऊदी जे कमीस मुस्तेक में एयरबेस ते निशानो बणायो आहे। सऊदी अरब हुसैन जे हमले जी तस्दीक न कई। रियाज जे ॾखण में मिसाइल खे नाकारा बणाइण जी दावा। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठ रेलवेज में सुधारनि बाबति इजलास। शहबाज शरीफ जी ML1 ते कम तेज़ करण ऐं रेलवेज में कारपोरेट तौर तर्ज़ जा सुधारा आणण जी हिदायत। ML1 जी तामीर लाइ कमर्शियल मनसूबनि ज़रिए बैंक खां फंडिंग वठण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। शहबाज शरीफ चयो आहे त रेलवेज जे कमर्शियल ज़मीन खे इस्तेमाल करे रेलवे खे बहितर बणाए सघिजे थो। इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ML1 खे चार हिसन में विरायो वियो आहे। आर्मी फंडिंग सां गॾु मकामी फंडिंग ते भी कम जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं ख़बर वक़्तनि खां बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी आहिनि। 18 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि KPK जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। 13 दहशतगर्द जनम भेड़ा कया विया। बलोचिस्तान जे इलाइक़े मस्तोंग में कार्रवाई दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बारूदी मवाद ऐं हथियार कया विया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटी फोर्सेज खे भेटा पेश कई वई। सिंध वाना या वज़ीरिस्तान नाहे जो माण्हू FIR दाख़िल कराइण में देर कंदा। वाना बे माण्हू केस रिपोर्ट कराइनि था, सिंध में छो नथा अचनि। सुप्रीम कोर्ट जा सिंध में FIR दाख़िल करण में देर वारे केस ते सख़्त रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट पारां FIR में शिकायत कंदड़ बदिरां दरख़्वास्त ॾींदड़ जो लफ़्ज़ इस्तेमाल करण जी हिदायत। गुज़री दौरान DIG सखर नासिर आफ़ताब ऐं SSP खैपुर अमीर मक़सूद सुप्रीम कोर्ट में पेश थिया। पुलिस इख़्तियारनि IG सिंध जी हिदायत ते FIR देर बाबति रिपोर्ट बि सुप्रीम कोर्ट में पेश कई। सिंध में FIR दाख़िल थियण में देर ते सुप्रीम कोर्ट पारां सिंध पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो। सदर कोर्ट भरिसां कारे इल्ज़ाम हेठि नौजवान ऐं नारी क़तल हथियारबंदनि कुबो सैद ख़ान थाणे जी हद में नारी नगमा ऐं नौजवान नदीम खे क़तल कयो। खिपरो में नौजवान शहजाद मरीज जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि जो पैदल मार्च मक़बूले वारसनि 10 किलोमीटर पैदल मार्च कयो। वारसनि चयो त 20 ॾींहं गुज़रण बावजूद शहजाद मरीज जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। कातिल गिरफ़्तार करे खेनि कानून जे कटहरे में आंदो वञे। दादू में नंढपिण जी शादी वारे केस में अहम अखबराई। अदालती हुकुम ते कुंवार घोट ऐं निकाह पढ़ाईंदड़ मौलवी गिरफ़्तार। घोट इमरान ख़ान भंडवासी, कुंवार कूज घोट ज़हीर भंड ऐं मौलवी खे गिरफ़्तार कयो वियो। कुंवार जे वारसन दादू जी अदालत में कुंवार जी नंढे हुअण जो जवाब ॼाणायो। गुज़री दौरान अदालत कानूनी घुर्जूं पूरियूं न हुअण जे टिनी गिरफ़्तारियुनि जो हुकुम ॾिनो हो, जंहिं बाद पुलिस टिनी ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
7: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
8: सुपर वाइट।
9: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकला है। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
10: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज,
3: सिंध की आवाज।
4: आप इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, खूबसूरती की दुनिया में आपका भी नाम हो जाता है। कई मरतबा तो ऐसा वाला सीन हो जाता है कि भाई हम अपने चेहरे को समझ नहीं पाते हैं, चेहरे पर कौन से प्रोडक्ट लगाने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से अवॉइड करना चाहिए, और इस तमाम सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि बीच में हमारा चेहरा जो ना वो बेचारा खराब हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर अप्लाई कर चुके होते हैं। तो आपकी स्किन ज्यादातर जब सेंसिटिव होती है ना, तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब किया करें जो कि थोड़े से लाइट हों, मेडिकेटेड फार्मूले हो और आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो, और खास करके ऑल स्किन टाइप भी हो। तो बिल्कुल से यहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि भाई अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं, तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे और رابطہ करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाएगा। बिल्कुल नाम से इस्तेमाल करते रहे और खूबसूरती को जरा पहचानिए, और साथ ही साथ अगर आप ना ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताएं कि आपको फीडबैक कैसे मिलते जा रहे हैं। और इन खा अलावा जिन जिन माण्हू ने इस्तेमाल किया बागबा जेके असांजे आस पास आहिनि जंहिंखे असां सुञाणू था, तो उन्हनि माण्हुनि जो ॾाढो सुठो असांखे रिस्पॉन्स मिली रहिया अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणण खां पोइ असांजी स्किन जेका ग्लो करण स्टार्ट थी विया, चेहरे जा जेके प्रॉब्लम्स आहे दूर थी विया आहिनि, ऐं ख़ासि करे तव्हांजे चेहरे ते जेको निखार आहे न उहो अची वियो आहे, ऐं तव्हांखे जेके रिज़ल्ट मिलिया आहिनि अहिड़ा मिलिया आहिनि जीअं तव्हां कोई मैंगो फेशियल करायो आहे। अगर आप भी अपने पैसों को बचाना चाहते हैं या फिर अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप करके देखिए। मैं इतनी जब ये बातें बताती हूँ ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, ये तमाम बातें सच है जनाब, आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना तमाम चीजें एड की गई है, जैसे कि इसके अंदर वाइटामिन बीट्स है, माइक्रो बीट्स है, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को बिल्कुल जी प्रीमियम फार्मूला बना देती है। तो अगर आप भी कोई प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए हाजिर है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, आप खवातीन भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल मजेदार बात है कि आप सब लोगों के लिए है। और जी ये बात आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को वो जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर ही तैयार किया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो दो रातें लगाएं और अच्छा सा रिजल्ट हासिल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये आपको मुनासिब सी कीमतों में मिल रही है, तो आज ही अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास निशानी आप लोगों के साथ शेयर करती चलो, क्योंकि जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको नहीं होता पता कि भाई अगर आप परचेज करने जा रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो आप लोगों को दुकानदार कोई और प्रोडक्ट थमा देता है, कहता है कि भाई ही वठी वनो ही तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, उनके खबर हूं तो तुम पढ़ियल ना आई तुम पढ़ी ना सको। तो अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वनो था, तो यह निशानी तुम पाने जहन में रखी छो, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है उनके डब्बी के मथा डॉक्टर माई जो फोटो लगल है, और डॉक्टर माई जो फोटो ऐसी करे तुम खबर पेजी वही तो बाबा हि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, और जो कलर आयो व्हाइट थोड़ो हल्को हल्को ब्लू कलर है। सो यो जदी तुम कॉम्बिनेशन ऐसी वनो तो खबर पड़ी वही तो बाबा तुम सही प्रोडक्ट वो पाया। बाकी जी पढ़ल उनकी तो खबर वडन वडन अखरन से डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखल है, जो तुम नालो ऐसी परचेज कर सो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश मिली रो है, वो भी वन न विसारींदा, तुम लाजमी ट्राई करो जनाब। खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से ही आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कीजिए। क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते महंगे हो, चाहे वो कितने सारे, या फिर वो ऐसा दावा करता हो कि भाई आपके चेहरे को अच्छा बना देंगे, गोरा बना देंगे, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट का यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि आप वाकई किस ट्रिप में फंस चुके हैं। क्योंकि जब आप एक मरतबा कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा लेते हैं ना, तब उससे जान छुड़ाना और अपनी स्किन को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन तमाम चीजों से बचिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए। डी स्किन का फार्मूला बहुत सेफ है आप सब लोगों के लिए। नॉर्मली आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो खैर से सर्दियां भी आ रही है। तो सर्दियों में तो वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अगर आप भी इस तरह का कोई सीन बना रहे हैं या बना चुके हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हमेशा याद रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद ला देगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमाम भी पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइन चाहिए था तो तमाम की डायल करो है 0332738439। बुरी 332 74 84 309 और बो नंबर है 03125025907। बुरी 312 50 50 970 ये बई नंबर हैं जो डायल करें पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराइंदा हलो बाबा सोना सोना थींदा हलो प्यारा प्यारा थींदा हलो आई पांजी खूबसूरती के दस्यो तो हाँ तुम्हारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना शुरू कई है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो अज जो है मामा का सवाल पुछो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में दसो मैं डेली केडी गाल बुधाई दी पर जी किस्मत से सवाल पुछने तो बत्ती गुल थी वेंदी आए छो आखिर अज मामा का सवाल पुछो है तो मुख्य बुधाओ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो वाइटमिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स इन कम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर यानी कि इन बिन सीजन के हुजन से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कड़ो फायदो मिले तो तवा के कड़ो फायदो मिलो यो तुझा 888 ते फेसबुक से ज्वाइन कंदा हलो था जिनके ना ही तरीकेकार खबर तो मैसेज किया कंदा असांके तो तां मोबाइल खणो मोबाइल जो राइट ऑप्शन में वनो टाइप कयो एल आर के सिंगल स्पैश जो पाने पूरो नालो लिखो मैसेज लिखो उनके शेयर करी सडियो 888 ते अगर तां मके फेसबुक ते बुधन चाहियो था फेसबुक ते ज्वाइन करण चाहियो था तो जी लाड़का ना FM 88.8 हमारा पेज है वहां पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिलती है उसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए जनाब कैसी कंजूसियां। ओके जी सो ये तरीके कार फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों ने किया या फिर अभी तक रहता है और रहता है तो क्यों रहता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं चाहती हूँ कि जो आप गलत से प्रोडक्ट लगाना शुरू करते ना उनसे तो कई गुना बेहतर है कि आप कोई अच्छा सा कोई प्यारा सा और कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जो आपके चेहरे पर खूबसूरती देने के साथ साथ आपके चेहरे पर निखार भी लाए आपके चेहरे की हिफाजत भी करे और आप हमेशा के लिए खूबसूरत भी हो जाए। अच्छा हाँ यह गाल भी तासा शेयर करनी हला कुछ मानन के ये लगनो है तो बाबा असा प्रोडक्ट लगायूं था आई प्रोडक्ट लगाने सा के छड़े दीदासी तासा के जेको रिजल्ट मिलया वो खत्म थी वेदो अगर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो था तो जेको रिजल्ट तमा के मिलयो हुंदो वो तमा जो आए बाबा तांगा केर भी कोने खसिंदो चाहे ता प्रोडक्ट यूज कयो था या न था कयो समझी गया जेके तांगे खूबसूरती मिलया वो हमेशा तमा जी खूबसूरती आए आई तमा हमेशा जिला खूबसूरत थी वेंदा। सो मर्द मायूं सभी ट्राई करे दिसो अगर तमा जे घर में शादियां थियण वारियां आए या तमा पांजी शादी थियण वारी आए तो बाबा छड़ो सबनी गालन के दुनियादारी के हर चीज के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी चो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। तो ये तो बातें थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। फिलहाल आप लोगों के साथ जो बातें होंगी वो आप लोगों के फीडबैक से रिलेटेड होने वाली क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं तो उनकी जाने भी आती है और यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाई कहते हैं कि टॉपिक बताओ मैं अभी आया हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि आपने सवाल सुन लिया होगा और ये हमारे साथी हसनीन रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। बिल्कुल जी थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा ऑलरेडी अवेलेबल कराए छड़ी है सो तमा हसनीन वर्ती है या कौन वर्ती है। उनके अलावा एसन कहते हैं टॉपिक का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया काड़े वया जगह चवंदा है पेरू जवाब मां दींदो आया खबर पे बिल्कुल माना तई वेट क्या थी तुम्हारे जवाब मुख्य छू न मिलो है। पर दिठो वे तो ऐसे तवा भी जवाब न दिनो है तवा भी दियो खबर पवे ठीक है। और हमारे साथ हैं जी एक मिनट जैन कहते हैं कि हाँ जी हम भी लगाते हैं डी स्किन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सिडो क्या बात है ऐसे ही लगाते रहिए। दर्दी दिल कहती हैं कि टॉपिक चंदा फेशियल वाला निखार देते हैं ओके अली रजा लगारी भाई कहते सिस्टर नदीम मिरानी प्ले करें मां कोशिश क्या थी भाई अगर मुख्य मिली और टाइम बची हो तो तवां जलाए बिल्कुल नदीम मिरानी हलाए वठंदासी पर मुख्य तां बुधायो तो तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई आई तवां का जो सवाल पूछने जवाब था मुख्य छा था जो निदड़ी हमारे साथ नाचो थे कहती हाय हेलो मैं भी आ गई भला बहुत अच्छा किया भला तुमने अच्छा हसनैन कहते हैं कि आबिद भाई ने अवेलेबल कराई थारो शामी डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल जी आबिद भाई ने थारो शामी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया है आबिद भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने में बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कराइए ठीक है अवेलेबल तो आप लोगों के लिए अब हो चुकी है अब ये काम बनता है कि आप परचेज कब कर रहे हैं और आप इस्तेमाल कब कर रहे हैं

अच्छा पोस्ट के लाइक शेयर करो तो कौन है? दर्दतुल कहती है वाह अमेजिंग सॉन्ग, थैंक यू डानू। और चाचा कहते हैं माइक्रो बीट्स क्या है ये तो मैंने आप लोगों से पूछा है, मैं तो आपको रोज ही बताती हूँ, आज आप मुझे बताइए। निधि कहती है माँ पप्पू तू मुझे पप्पी। ओके लक्ष्मी अबड़ू हमारे साथ ही वालेकुम असलम कहती मोल इस्लाम सदरा केड़ा हाल है तवाजा तबियत ठीक है। अज माँ भी पांच शहर सखर में तो शो बुधा रात वापसी आ कराची जी वो कराची में बुधनासी शो चमन जो गानो बुधायो। अच्छा बिल्कुल भामा कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंद जो गानो हलायां पर तव्हां जेको सखर मां वञो था कराची त सखर मां तव्हां जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे लाज़मी वञो, मतां कराची में मिले न करे सखर में त मिले थी त तव्हां सखर मां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे वञो ठीकु आहे।

अरे वाह भाई, किशोर भाई को तो सब पता ही। ओके जी ओके। और अर्श मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं शहर जेगा बाबा से, कहते हैं अर्श मोहम्मद गोला, मुजफ्फर अली गोला, अजहर अली गोला, शो जबरदस्त, लाजवाब आवाज आपकी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक माइक्रो बीट्स और वाइटामिन बीट जो होते हैं ना, चेहरे को नरम मुलायम और चमकदार बनाते हैं। वाइटामिन बीट से चेहरे की खुश्की दाग धब्बे खत्म करता है, ऐलान खत्म। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जवाब थोड़ा सही नहीं है। अच्छा, ये हमारे साथ अब्दुल्ला अली गुलाब है। ओके, सो अब्दुल्ला अली लिखते हैं कि वाइटामिन ए बीट्स जो होते हैं ब्यूटी क्रीम में जल्द को नमी फराहम करने और जल्द को नरम रखने में मदद के लिए शामिल किए जाते हैं। माइक्रो बीट से क्रीम को जल्द पर बेहतर तरीके से फैलाने में मदद कर सकते हैं, ताहम उनका असल काम क्रीम के फार्मुलेशन पर मुनसर होता है। इस प्रोडक्ट के दुरुस्त फवायद इसमें शामिल अज्जा और फार्मुलेशन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। ओके, अब्दुल्ला आप मुझे बताएं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं? हाँ जी, जेको मन ना तो पोने की ये चाहिए सजे, बस सही आए को भी थोड़ो मुझे को नदिया लगती थी। तारिक भाई कहते हैं सजाद अली रुस्तमानी मातली से शो सुन रहे। अच्छा, सजाद भाई का गाना हमने कल ही लगा लिया था, तारिक भाई यही वाला गाना लगाया था जो सजाद भाई ने फरमाइश करी है। और रशीद खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, हैदराबाद से आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया नहीं रशीद भाई, बताएं तो हैदराबाद में मिल रहे हैं? वैसे हाँ मिल ही रहे हैं, तो आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा।

ये हमारे साथी जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम योर अदो है जी, अनवर अली भाई फ्रॉम सोनरी फ्रॉम ओके. आज जी भाई, आपका बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा. अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से, आपको वेलकम. डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हैं फैमिली में, जियो प्रोग्राम, जियो जी, तमाम भी जियो, जेके जेके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर ही रहा है. हाने ब्याह चंदा असां जी छूती पाई है चवे ता भी लगा ना तांगे के एंजल हुआ है. अच्छा, पिटोरो से वफा सुल्तान शर हमारे साथ है, एंड रामचंद फोजिया का गाना तो सुनाए. ओके, सवाल जवाब दो तब बुध रहे हम थे. महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रही है सिस्टर कुंज सिद्रा मुस्कान. अस्सलाम वालेकुम कुंज, कुंज कुंज हसके जलाल तो प्ले करो, कंजूसी करती है सॉन्ग सुनाने में, आपकी मर्जी. सो नाइस ऑफ यू. तमाम भी तो ऐसो कदे कदे कंजूसी करे वठना आयो ना. अज जी मैं तक सवाल पूछा था, जवाब न था बुधायो तर में, मतलब तांजी कंजूसी ही मुझी कंजूसी बराबर थी वही सफा बराबर. पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की वठण में तां कंजूसी न कजो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी छो. भई हाने मां सोचा थी तो वाकई रोज रोज मान जा गाना हलाए हलाए नेठ मां भी थकजी पई आया. हाने तवा का एड़ा एड़ा सवाल पूछनम, एड़ा एड़ा सवाल पूछनम जी ताने जवाब ही न दे सको. आई मां ताजो गानो ही न हलाए सका. सही है, सो यू आ हाने रूल हुंदो बिल्कुल बाकायदा. ता टॉपिक जो जवाब दींदा त तवा जो गानो हलायो वेंदो, न त पो बस जियो करे से डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए से. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा अना तई कोन वरती आ त बाबा छो न वरती आ है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फार्मूलो जेको आ मेडिकेटेड फार्मूलो आ है, 2-in-1 फार्मूलो आ, यानी कि जदी तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना त तवा के फेशियल वारो रिजल्ट मिलंदो. आई अगर तवा भी चाहता त बाबा तवा जी शादी थियण वारी आ है, तवा सोणा दिखा जो सबनी खा, तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था. हर स्किन जी लाए आहे, हर मानू जी लाए आहे. ट्राई कयो बाबा, सुणा सुणन थी वेंदा. आई ते टाइम टू आई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ओ ही वनी ओ ही वोटा थी. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए.

0: सचल की सर मस्त
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो उधर रहो।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream,
4: खूबसूरती है जो असल राज। सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अरे न खुश्क और बीरोनों की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चार रंजू खूबियों और कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे और चार रंजू खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस और झुरन के घट कर और रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम दीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम और ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज उधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्रीम का यूज कर लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप यूज करेंगे ना, तो आप लोगों को
4: डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर रहा था, तो चेहरे से खूबसूरती से गडोगड तमाम चेहरे की हिफाजत भी थी रही, तमाम हर स्किन के लिए है, तमाम हर मौसम में लगाए सको था। मसीह की गाल सब मानू लगा, मर्द मायू हर कोई लगा सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तमाम बाबा इन चीजों का बचो, जी दिसा अजकल मर्द या वन रोड का मर्द जो सैलून में वेठा हूं, मल सल लगी पी हूँ अन खबर ना हुआ कड़ा कड़ा प्रोडक्ट तमाम चेहरे से लगाइंदा इन चीजों का थोड़ा बचो बाबा, ये बहुत अनहाइजेनिक सीन वाला जो ना वो हो जाती है सिचुएशन। तो आप ऐसा कीजिए, घर बैठिए सुकून से रिलैक्सिंग माहौल बनाइए अपने लिए, रात के टाइम जब आप सोने लगे तो आप ऐसा कीजिए डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये बड़ा ही जबरदस्त फेस वॉश है, ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपके चेहरे को डीपली क्लीन करता है, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो है ना वो एड किया गया, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना इसकी एडिशन इतनी कमाल की है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये भी आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फेस वॉश की बात कर रही हूँ, और फेस वॉश जो है ना डी स्किन का ये आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा वाला सीन नहीं है कि आप टीनेजर होंगे तभी लगाएंगे, नहीं, डी स्किन का फेस वॉश आप सब लोग लगा सकते हैं, आप भी लगाइए और आप भी लगाइए, सब लगाओ। एंड डी स्किन जो फेस वॉश एक बार तवाजी स्किन के हाइड्रेट रखन दुआ है, मॉइस्चराइज रखन दुआ है, खास करे सर्दियों अचन पे तवाजी स्किन काफी ड्राई थी वेंदी है, सजन मानन जी स्किन ड्राई थी वेंदी है, उनके तो ढी नीड आ, तो बाबा तुम डी स्किन जो फेस वॉश लगाए, पांजी स्किन के हाइड्रेट रखो, आई उन फेस वॉश करी वो सफा सही फेस वॉश कर, राज टाइम ते फेस वॉश लाजमी कजो, आई चेहरे के सुकाए चंगे तरीके से डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर छो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम ई पांजे चेहरे से लगाइंदा जे क्रीम बाबा थोड़ी तांजे चेहरे से नजर अचे, छो तो ये कुछ मानू हुंदा आहिनि बस ये लगाए करे वरी मसाज करण में शुरू थी वेंदा आहिनि, बाबा नाइट क्रीम के मसाज न कबो आहे, नाइट क्रीम सिर्फ प्यारे सां सुकून सां लगाए तां सुम्ही वो सॼो कमु पाण ही कंदी आहे, तव्हांजो कमु आहे सिर्फ़ लॻाइण, जेको तव्हां लॻाईंदा सही आहे, क्रीम लॻाए करे सुकून सां सुम्ही पओ, ऐं सुबुह जो उथी सुबुह जो उथण खां पहिरीं कमु तव्हां इहो कयो त तव्हां पंहिंजो फेस वॉश करे अचो, फेस वॉश करण खां पोइ तव्हां ॾिसंदा पंहिंजे चेहरे खे आईने में त तव्हां चवंदा आए हाय मज़ो अची वियो, एॾो भलो रिज़ल्ट पहिरीं चकर में लॻाइण खां ई तव्हांखे मिली वेंदो, त जॾहिं तव्हां ॿियो दफ़ो लॻाईंदा पोइ त सभु तव्हांखे परफेक्ट रिज़ल्ट मिली वेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे बाबा, हिक घर घर ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम घर घर जो माण्हू लॻाए सघे थो, हिक हिक घर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे जीअं असांखे ख़ुशी थिए त असांजा सुहिणा सुहिणा लिसनर जेके न उहे वधीक सुहिणा थी विया आहिनि। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाए था कोन, मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो, ऐं जेके नंबर्स तव्हांखे ॿुधाया पिया नंबर ते तव्हां राबितो कंदा रहो, ठीकु हो गया, ओके।

बाबा मां तव्हांखे केतिरो ॿुधायां थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में, का ॻाल्हि तव्हां बि समझी वञो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि पाण वञी परचेज करे अचो, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा तव्हांखे इलाही सारा फ़ाइदा मिलंदा। मां जेतिरा ॿुधायां थी न, शायदि हुन खां डबल ते मिली सघनि था। सो तव्हां बि लॻायो ऐं सुञा थी वञो। फ़ाइज़ा हली आई अथव, चए थी छो मूड ख़राब कयो अथई, हालांकि हुजे छो मूड ख़राब कयो अथई।

तव्हां न ॾिनो आहे सवाल जो जवाब, इन जे करे तव्हांजो गानो मथां कोन हलाए सघूं। सवाल मां तव्हां खां इहो पुछो त तव्हां मूंखे ॿुधायो त वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेके आहिनि उहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर एड थियल आहिनि, इन्हनि जो छा कमु आहे, समझो था। अच्छा निदली कहती है कि काम ये होता है कि फेस सॉफ्ट हो जाता है और स्किन प्यारी हो जाती है। मुखे हिकड़ी छोकरी सही जवाब दिनो है हिमल ताई, यानी कि तकरीबन पूरो प्रोग्राम थी चुको है ना। हिकड़ी छोकरी आकड़ी छोकरी जे सही जवाब दिनो है यो मैं तक बुधाई थी, वह कड़ी छोकरी वो तक थोड़ी देर का बुधाईस, पर हाल ही ना तुम टाइम आए तुम बुधा मुख्य। और यासिन खान कहते हैं कि बस जियो करे इस डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। हां जी जियो करे, तमाम भी लगाइंदा रहो। दर्द दिल क्या बात है आपकी।

हाँ जी मिलन तो पूछी वठना सी दीस किन ब्यूटी क्रीम लगाई थी कौन निदड़ी कहती थी कि मेरी एक दोस्त थी बचपन में सितारा काड़े वही हुआ हाने अधी अजय किशोर भाई तुम इलाही सारा कॉमेंट करी सजाएं हुए सब तुझे कॉमेंट पढ़ी छो फराज डेहरी उसामा और फराज की तरफ से सलाम जी वालेकुम अस्सलाम और कहते हैं विटामिन ई बीट से खूबसूरती के लिए होते हैं अच्छा सही सही सही अच्छा मुगल उमरानी भाई भी हमारे साथ मौजूद है स्टिकर सेंड कर दिए बहुत शुक्रिया हाँ अदो चाहे तो अदा सही कह रहा है ऐसी बहाने सब सवाल पर बात तो करेंगे सवाल ते गालाएं वो जरूरी ना है ना खा मुखे यो लगे तो सब मानो गोड़े सा बुधना था बाबा प्रोडक्ट के बारे में केड़ी केड़ी चीजों असा के बुधाई वन थी ये ना सुभानी वरी सिदरा को प्रोडक्ट के बारे में असा का सवाल पूछे जो असा के न अचे असा जो गानो न हले गाने से करे तो तुम कुछ भी करे सको था सो इसीलिए ये रूल है कि अगर आप सवाल का जवाब सही देते हैं तो आपका गाना लगाया जाएगा खास करके तब तब जब मैं आप लोगों से प्रोडक्ट के बारे में पूछूं तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा कि आपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी बातें आपको बताती हूँ वो गौर से सुननी है गौर से सुननी है ताकि आपको पता चले कि भाई क्या क्वालिटीज हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अकबर जो लोग लगाते हैं उनको तो पता है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से कितने सारे फायदे मिल रहे हैं हमें बाकी जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है तो उनको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के कितने सारे फायदे मिल सकते हैं और हजार भाई हमारे साथ मौजूद वालेकुम अस्सलाम हजार वफा शहजादो मक्सी भाई लाड़कानी खां सा के बुद्धि पयो थैंक यू वहीं भाई कहते अदा माइक्रो बीट्स का काम स्क्रब रग अरे भाई स्क्रब वरी काड़ा आची हो स्क्रब जो तो मैं नालो ही न वठंदी आया ऐं उल्टू तव्हांखे मना कंदी आहियां त ईअं रगड़ींदा न कयो स्किन खे क्रीम लॻाए करे एसन कहते टॉपिक माइक्रो बीट्स स्किन को

ओके जी, आपने तो पूरा ये पैराग्राफ है मुझे चैट जीपीटी से पूछ के, अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि हमारे काम की तो एक भी बात नहीं थी। अजू भाई एकड़ो मिरेकल थी वियो आ त फई भाई जा सब दुका जगह न उए फेल थी वया है। यासीन खंड चौथा त असा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइंदा, बिल्कुल बाबा तां लगाइंदा रहो। हाँ निदड़ी मां पाण या चीज दिसा पई मुके खिल अची पई पर असा थोड़ो कंट्रोल कयो आ। मोहम्मद समान के थे बुआ जी आप

जी जी मोहम्मद जमान भाई, आप ऐसा किया करें कि आप बी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके मुझे बताएं कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है? एस एम के रेडी विझी छे हाँ

सलाम सिद्रा जी, जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो आहे, गुड आहे। फ्रॉम डीआईजी ऑफिस लाड़काना से अहमद मुगल का गाना तांके सुभाणे बुधराइंदासी तांजा पसंद जा गाना। किशोर भाई के दे अदा आ तुजी आवाज में एतरो मगन हुंदो आहा, तो केड़ा केड़ा फायदा रसिंदो खबर ही नाहे पवंदे। दिस

ब्यूटी क्रीम जॾहिं लॻाईंदा त सभु कम डी स्किन ब्यूटी क्रीम ई कंदी, समझो था? तव्हां खूबसूरत थी वेंदा, सुहिणा थी वेंदा, प्यारा प्यारा थी वेंदा। हांजी खिली पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो। बाक़ी सोचण वारी ॻाल्हि आहे, ईअं छो चवंदा आहिनि खंड जो जहाज ॿुॾियो अथई? खंड जो ई जहाज छो ॿुॾंदो आहे? अचने वाली बात है, बाकी चीजों के बारे में क्यों नहीं बात हो।

महेश सर हमारे साथ है। महेश सर साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। डे स्किन ब्यूटी क्रीम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा करिया तमाम के सजो सिलेबस पढ़ाई तमाम का टेस्ट वरती है, पर वो चवना है न त जडी जेके सदोरा बार हुंदा है न ओए कन दई करे सब कुछ चीजों सब समझना है न, पर जडी टेस्टी वारी निया त ओए ही पास थिना है जेके सही तरीके सा मतलब जेको न वो जेको भी उनन के टीचर पढ़ाईंदी आ वो समझना है, पर जेके ना निकम्मा हुंदा है न ओए सिर्फ भई हां कंधे लाईंदा है न सारी कार करिया। सो टाइम जो सफा तेजी से गुजरंद वे तो टॉपिक जो जवाब अगर मां के बुधा तो टॉपिक जो जवाब बिल्कुल तांके नबी ना हजार दफा तो लाजमी बुधाई हूँ हजार भाका पुछजो। अगर अस इत गाल क्यूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो वाइटामिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स न हिकड़ा जेके माइक्रो हुंदा है माइक्रो बीट्स जेके सफा नंढा हुंदा है जेके खास करे फेशियल जे अंदर एड थियल हुंदा है वो इन लाइ एड थियल हुंदा है जे फेशियल जेका रिजल्ट हुंदा है 10 गुना वधी वेंदी आ बिया नंढा नंढा बीट्स हुंदा है जेके वरी स्क्रब जे अंदर एड थियल हुंदा है सो वे बई जेके बीट्स आ ना वे बई अलग हुंदा है वे फेशियल वारा अलग हुंदा है स्क्रब वारा जेके ना वे अलग हुंदा है वे जेके हुंदा नजर ईंदा है स्क्रब वारा तो नंढा नंढा दाणा हुंदा है स्क्रब जे अंदर पर जेके माइक्रो बीट्स हुंदा है ना वे नजर ना ईंदा उन जी जेका क्वालिटीज हुंदा है जेको रिजल्ट हूं ना वो उन प्रोडक्ट के अंदर तमाम 10 गुना ज्यादा मिलन है सो जे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स उसे बीट्स जे बब महंगन फेशियल के अंदर एड थियल हूं हाँ तवाज लॉटरी लगी वही है तवाज ला अड़ो प्रोडक्ट अची वो तवे चेहरे के खूबसूरत बनाए तो तवे फेशियल वो रिजल्ट दे तो सो हाँ अगर तुम सुबह या बे ढी कहीं पुछा तो वाइटामिन ई बीट्स माइक्रो बीट जो कम है तुम बेफिक्र थी मुख्य बुधा तो बबा इन इो कम है सही जी वाइटामिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स ये फेशियल के अंदर एड कया वा ये फेशियल की क्वालिटीज रखन था जदि तुम यो प्रोडक्ट यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कदा तो फेशियल वो रिजल्ट मिल समझो था सही जवाब मुख्य दर्दे दिल दिनो इन सजी रश में माशाला तुम खुश रहो अल्लाह तक सलामत रखे रश लगे रखो सही जवाब भी दियो वरी तुम मुलाकात मुझी 5 बजे वे प्रोग्राम में थे थी सो पाँच इलाह सारो ख्याल रखो ओ हेडो सारो इतने का गलती थी तो माजरत कर कें मैसेज रेजी वा को गानड़ो शानड़ो रेजी तो बाबा माजरत क्यूं था मोकलानी ना सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सुपर वाइट्स राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
5: गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा कदम जारी रखने की हिदायत हिन वक्त खबर ना ईरानी हुकूमत ए मुल्क जो इंतजाम केर हलाए रो है ईरान जो बो नंबर क्यादत भी खत्म थी चुकी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है ईरान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है खबर ना है ईरान के केर हलाए रो है अमेरिकी नायब सदर जे डीन है वॉशिंगटन ईरानी सदर ए परदेही वजीर से राबते में है जंग के खात्मे लाई यूरेनियम जो रचाव घटाने वाला वायदा काफी ना तेहरान के यूरेनियम के रचाव में वाजे घटाई करनी पवंदी कतर के सालसे में अमेरिका ईरान जो गालू जारी हैं गालू के नतीजन तीन पहुंचाण वाले कोशिशन के भी जारी रखो है कतरी परदे वजारत के डायरेक्टर इब्राहिम बिन सुल्तान अल हाशमी चवाए तो मके तहत खिते के मुल्क के वसीलन के तहफुज इस्तकाम के यकीनी बनाने लाए सहकार के वधिक मजबूत कबो अमेरिका ईरान जंग पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर अफ्रीका ए विच ओभर के मुल्क की आबादी के वधिक मुतासिर कयो आहे खिते में मौजूदन ताई गरीबन मां अध गरीब पाकिस्तान में रहन था आलमी माहौलियाती इदारे आईएमएफ की नई रिपोर्ट में चरकाईंदड़ इंकशाफ आईएमएफ रिपोर्ट में चयो वियो आहे त खिते में जारी तकरार सां तेल जो कीमतू वधियूं आहिनि महांगाई सबब गुर्बत में भी वाद थी आहे खिते में मौजूद गरीबन मां 48% पाकिस्तान में आहिनि अफगानिस्तान शाम ए यमन में भी गुर्बत वधी आहे यमनी होसियन पारां रियाज़ ए किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ए अबाजे एयरपोर्ट के मिज़ाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा उसी विड़ाकन मौजूब सऊदी जे खमीस मिस्टेक में भी एयरबेस के निशानो बणायो आहे सऊदी अरब जो हुसैन जे हमलन जी तस्दीक न कई रियाज़ जे ॾखण में मिज़ाइल खे नाकारा बणाइण जी दावा वज़ीर आज़म जी सदारत हेठ रेलवेज में सुधारण बाबत इजलास शहबाज शरीफ जे एम एल वन ते कम तेज करण रेलवेज में कारपोरेट तर्ज जा सुधारण जी हिदायत तामीर लाइ कमर्शियल मनसूबन ज़रिए बैंक खां फंडिंग वठण जी मंजूरी डि॒नी वई शहबाज शरीफ चयो आहे त रेलवेज जे कमर्शियल ज़मीन खे इस्तेमाल करे रेलवे खे बहितर बणाए सघिजे थो इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त एम एल वन खे चार हिसनि में विरिहायो वियो आहे आलमी फंडिंग सां गॾु मक़ामी फंडिंग ते बि कम जारी आहे सिक्योरिटी फोर्सिस जो खैबर पख्तुन ख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि 18 दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो 13 दहशतगर्द ज़हन भेड़ा कया विया बलूचिस्तान जे इलाइक़े मस्तोंग में कार्रवाई दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि बारूदी मवाद ऐं हथियारत खे विया सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं वफ़ाक़ी गरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश कई
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जीए एफएम 91.6
7: फाइन थोड़ा मी टाइम बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है
8: तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन
7: मैं सुपर वाइट की राइस हूँ जिसमें इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
9: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
8: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सब...

0: खुशखबरी का भी जरूरत न आहे। जेकर तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन इस्तेमाल के लिए राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिटाई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: हम एक खोखली औरत मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो वो पागल हो जाएगा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अरे न खुश आई बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज आई डल स्किन के कयो आउट पर यू की है तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई
3: अफगान पॉलिसी थे कौन मुत्तफिक़।

बेपीसीए जी दावत देनी आहे। खैबर पखतूनख्वा दहशतगर्दी के हर कीमत ते रोकणो पवंदो। दहशतगर्दी खिलाफ कुर्बानी साराह जोगियूं आहिनि। ॿियनि सूबनि जीअं जो वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम सां मुलाक़ात दौरान वफ़ाक़ी मक़ाम कश्मीर गिलगितान ऐं ख़ैबर वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी। कश्मीर गिलगित बल्त कदम जारी रखणु

रेलवेज में सुधारा आए लाइ कमर्शियल ज़रिए खां फंडिंग वठी थियो त रेलवे ज़मीन खे इस्तेमाल करे रेलवे बणाए सघिजे थो. ब्रीफिंग हुयो त ML1 खे

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: गडल कॉमन जमन मिशन पाकिस्तान के किरदार ए कुर्बानन के उजागर कयो एंटोनियो गोतरेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ए अमन मिशन में पाकिस्तान के कुर्बानन के भेटा पेश की
4: मुजाकरात की इस पहुंच को किसी सूरत भी रियासत को मार बना के सियासी मुतालबात को मनवाने का हथकंडा जो है वो नहीं बनने दिया जाएगा। पीटीआई की जब से शनाख्त मिली तो उसके बाद से उनका एक ही

0: सदाई जाती मफाद के कौमी मफाद तरजीह दिनी है। केपी के गवर्नर जो अमन अमान बाबत इजलास कर गैर आइनी है। केपी के वे वजीर सोहेल आफरीदी काबीना के खिताब कदे पीपुल्स पार्टी माजी में भी गलत किरदार अदा कन्दी रही है। गवर्नर पारा इजलास की सदारत कर आइन ए जमहूरियत ते हमलो है। केपी पुलिस के पंजाब पुलिस बढ़ाने की कोशिश न कई वे। केपी हुकूमत सूबे में अमन अमान लाय संजीदा है। वफाक पांजी होल खत्म करे।
1: अटेम्प्ट करेंगे तो काफी हुकूमत जो है तो वो अपनी तमाम जो है जो आजमात और अपने जो मीन्स हैं ग्रीय कार लाएगी। लगता है जहां आपका क्या मत है समझें कि उसमें कोई रुकावट हो सकती है। कोशिश हम कर रहे हैं जो आखिरी आपके ऑप्शन पर नाम जाए लेकिन अगर कोई रास्ता ऐसा ना बचा तो फिर ऑप्शन जो है दारुल हुकूमत को हम उनके रहना करें तो कहीं सोचक से चार देश माह के बाद ये लश्कर के शिकर हैं तालिबान के साथ मिलकर दारुल हुकूमत को सीपीआई जो है एक सियासी पार्टी का रोल अदा करे एक दहशतगर्द पार्टी का रोल अदा करे।
0: हुकूमत केपीए में गवर्नर राज समेत समूरन आइनी ऑप्शन से गौर कर रही है। गवर्नर राज लागू करना आखिरी ऑप्शन होंद बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चया है तो पीटीआई वारा हर टिन महीनों बाद इस्लामाबाद से का कंदा पीटीआई की सूबाई हुकूमत जो दहशतगर्दन से गठ जोड़ वाली शायदी मौजूद है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी है तो लॉन्ग मार्च के कें भी सूरत में इस्लामाबाद में दाखिल थे नो वो सोहेल आफरीदी रवियो तब्दील न कर हालत उनको जिम्मेवार पान होंद। कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। अयाज सादिक जेयूआई सरबराह के अपोजिशन से थियल गाल बाबत आगाह कयो। सरदार अयाज सादिक जेयूआई सरबराह से मुलाकात लाए संदस रहाइश का पुख्त हो उमरे की शहादत से मुबारक डी। वजीर आजम की सदारत हेठ रेलवेज में सुधार बाबत इजलास शहबाज शरीफ की एमएल वन से कम तेज कर रेलवेज में कारपोरेट तर्ज का सुधारा आने की हिदायत। एमएल वन की तामीर लाए कमर्शियल मनसूबन जरिए बैंक्स का फंडिंग वठण की मंजूरी डिनी वही। शहबाज शरीफ चयो तो रेलवेज की कमर्शियल जमीन के इस्तेमाल कर रेलवे के बेहतर बनाए सकजे तो। इजलास के ब्रीफिंग में बुधा वो तो एमएल वन के चार हिस्सों में विराय वो है। आलमी फंडिंग से गड मकामी फंडिंग से भी कम जारी है।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।
1: ये गाना उनके लिए जोर की लाइफ जीरो और मुझे कहते लॉल मेरी मॉडल जैसी चाल।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो। हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद सिंध।

0: तजवाबाज जवाब दे रहा हूँ।
1: जिस धरती से जुड़ा है लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी वन सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: किया जाए। पीटीआई की जब से शनाख्त मिली तो उसके बाद से उनका एक ही जो है वो एजेंडा और मकसद रहा, तो अदम बर्दाश्त, नफरत, गाली गलोच का कल्चर जो है उसे सियासत में दाखिल किया जाए। ये किसी सूरत भी ना कानून, ना आईन, ना सियासी अखलाकियात इस बात की इजाजत नहीं देती।
1: रियासत के यंगमाल बनाए को भी मुतालबो नथो मंझाए सके, जाती एजेंडा के कौमी मफाद दे तरजीह न डनी वे। हुकूमत गाल दर बंद नाहन कया, पीटीआई जाती मफादन के पास से करे मसलन के हल लाय अगते अचे। वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो है तो पीटीआई इस्लामाबाद से चढ़ाई की कोशिश कर रही है। लॉन्ग मार्च लाए कैमा दहशतगर्दी थी है, अफगान पॉलिसी से
2: पीटीआई चेयरमैन हुकूमत का गैर मशहूर गाल मुतालबो कर छो। बैरिस्टर गोहर चाहिए तो जितो वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से लगाया पे वे वक्त गाल वन हा तो मसलो हल थी वे हा। इस्लामाबाद असो है लॉन्ग मार्च जरूर इस्लामाबाद एजम लीडर महमूद खान चकजई है तो पीटीआई बानी से मुलाकात कर बिना गाल नियो। हुकूमत मसले जो हल चाहे थी तो बानी से मुलाकात कराए।
1: खैबर पख्तूनख्वा में बदंदड़ दहशतगर्दी के हर कीमत से रोकणो पवो। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो दहशतगर्दी खिलाफ कुर्बानी सराह जोगियो है। ख्वाहिश है तो केपी बे मुल्क के बेन सूबन जी तरक्की करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो वफाकी वजीर अमीर मुकाम से मुलाकात दौरान गाल वफाकी वजीर अमीर मुकाम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से वजीर आजम के ब्रीफिंग डिनी। वजीर आजम की कश्मीर ए गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा कदम जारी रखने की हिदायत।
2: पीपल्स पार्टी सदाई जाती मफाद के कौमी मफाद से तरजीह डी है। केपी के गवर्नर जो अमन अमान बाबत इजलास करण भी गैर आइनी है। केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी काबीना के खिताब कन्दे पीपल्स पार्टी माजी में भी गलत किरदार अदा करती रही है। गवर्नर पारा इजलास की सदारत करण आइन ए जमहूरियत से हमलो है। केपी पुलिस के पंजाब पुलिस पढ़ने की कोशिश न कई वे। केपी हुकूमत सूबे में अमन लाय संजीदा है। केपी में ऑपरेशन थे नींदस।
3: अटेम्प्ट करेंगे तो पार्टी हुकूमत जो है तो वो अपने तमाम जो है लाजमात और अपने जो मीन्स हैं धीरे कार लाएगी। लगता है गांव आपके क्या मसले समझने को उसमें कोई रुकावट हो सकती है। कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिरी आपको ऑप्शन पर नाम जाए लेकिन अगर कोई रास्ता ऐसा ना बचा तो फिर ऑप्शन जो है दारुल हुकूमत को हम उनके रहने कर्म से कम सोच सकते बाहर देश में ना के बाद ये लश्कर कुछ करें तालिबान के साथ मिलकर दारुल हुकूमत को पीटीआई जो है एक सियासी पार्टी का रोल अदा करे एक दहशतगर्द पार्टी का रोल अदा करे।
1: सूबे के यर्गमाल नथो बनाए सकजे। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज समेत समूरन आईनी ऑप्शन से गौर कर रही है। बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो है तो पीटीआई वारा हर टिन महीनन बाद इस्लामाबाद से काह कंदा। पीटीआई की सूबाई हुकूमत जो दहशतगर्दन से गठ जोड़ वाली शायद मौजूद हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चौथ लॉन्ग मार्च के कें भी सूरत में इस्लामाबाद में दाखिल थे न दिनों वो। सोहेल आफरीदी रवियो तब्दील न किया तो हालत उन जिम्मेवार पान हों।
2: जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से हुकूमती वफद की मुलाकात। स्पीकर सरदार रिया सादिक राणा सनाउल्लाह ए वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। हुकूमती वफद मौलाना फजल रहमान के अपोजिशन से थियल गाल बाबत आगाह किया। मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत के केपी में गवर्नर राज या एमरजेंसी न लगाने जो मशवरो। सरदार रिया सादिक है तो उम्मीद ते दुनिया कायम है साथियों से राबता जारी है। इंशाल्लाह जरूर रस्तो निकरंदो।

फील्ड मार्शल सां गडियल कौमनि जे सेक्रेटरी जनरल जी मुलाकात, गडियल दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरतहाल, आलमी अमुन ऐं सलामती वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। वालरल कश्मीर तकरार, भारत पारां सिंध तास मुआदे खे इल्तिमाम में रखणु, अफ़गानिस्तान मां थींदड़

0: पेड़ियूं तेवील में वठी छॾियूं आहिनि। सिंध आबादगार इतिहाद शुगर मिल्स खे वक़्त सिर हलाइण ऐं सीजी कैनाल समेत ॿिया फिलेट कैनाल फौरी तौर बंदि करण जो मुतालबो करे छॾियो। कणक जो अघु 5,500 रुपया फ़ी मण ऐं कमंद जो अघु 650 रुपया फ़ी मण मुक़रर करण जो मुतालबो। आबादगार अॻवाननि जो चवण हो त हुकूमत पारां हिन वक़्त सारनि जो घटि अघु आबादगारनि जी मुआशी क़तल बराबरि आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाक
3: सच जो आवाज 91.6 जो आवाज बदलता रहो हक जो आवाज जी।

जमीन की गोद में सर रख कर सो गए आखिर, तुम्हारे इश्क में कितने निढाल थे हम भी, किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी।

हम अक्स अक्स बिखरते रहे उसी धुन में कि जिंदगी में कभी लाजा भी किसी का ख्याल थे हम भी गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी।

जी दोस्तों, तो आइए मिलके सुनते हैं गुलाम अली खान साहब की खूबसूरत प्यार भरी आवाज में ये प्यारा सा गीत, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा।

जी दोस्तों प्रोग्राम दिल जी गल सा रहा हूं अभी चौहान आया बुधी रहे हो जीए एफएम नेटवर्क दोस्तों आफ्टर ब्रेक असा अवा जो कॉल्स भी खड़ा से अवा सा कचहरी भी कंदा से खोड़ सारू दिल जो गालियों कंदा से हियर वक्त थी रहो आए इगली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खा वन खा अग में सन असा न्यूली ट्यून के हुआ उनके पंजो लाइव कॉलिंग नंबर बुधाई दो आफ्टर ब्रेक असा कॉल अटेंड कंदा से 03000113488 तपोए मिलूं था वापस एकड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोए ब्रेक खां पो तपोए बुधन विसारींदा दिल जी गाल अब चौहान सागर जी एफ एम नेटवर्क

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए। आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम।
4: छात्रों आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन, तो कोई तवान लाए आए एक बेहतरीन मौको। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिला जारी है। 4 साल जा डिग्री प्रोग्राम GBSN, GBSM, 5 साल जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, बुदंदा रहो।
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
7: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
6: जीए एफएम नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।
8: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अच्छा जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गल से गदाऊ है आप चोहना है मा बुधी रहे हो जीए एफएम नेटवर्क जी दोस्तों कोशिश कंदा से एक अद कॉल शामिल कियो उन खा पो असा डेफिनेटली न्यूज ब्रेक ना लाजमन वेंदा से असा वहां जे कॉल जे करे थोरो

0: रहिजी वियासीं. एनीवेज ॿई शयूं लाज़मन आहिनि, अवां बि ऐं असांजे प्रोग्राम जो पैटर्न बि. त पोइ कॉल शामिल कयूं था. अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? साईं मुंहिंजा वेलकम, भली कार ख़ुश आमदी. पहिरां कहिड़ा हालनि? ख़ुशि आहियो दुआऊं सर, अलाह जा अहसान,
1: अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो, आबाद हूंदव. दिलि जी ॻाल्हियूं इहे आहिनि त बाबा तालीम हासिल कयो,
0: बिल्कुलु
1: सुठे कजे, हिन में ज्ञान में अचो,
0: बिल्कुलु.
1: तालीम जेका आहे इंसान जो वॾो हिकिड़ो सुधारो बि आहे ऐं सुहिणो बि आहे.
0: बिल्कुलु बिल्कुलु, बेशक
1: भई बाबा.
0: पछाड़ीअ में रज वगैर जी फरमाइश, उहा बोल सर्च कयां, कोशिश कयां पियो, छल उहा पूरी थिए. माई भाॻी बि शामिल कयूं था, पोइ हिकु पछाड़ी में शामिल थी.
1: जेके दोस्त
0: ॿुधंदा सभिनी
1: महिरबानी.

0: बैक ते वञण खां अॻु में हिकु कॉल असां ॿी अटेंड कंदासीं, पर उमीद त उहा शॉर्ट कॉल हूंदी। जेको बि दोस्त आहे जंहिंजो नंबर ख़ुश नसीब जो रिसीव थी रहियो आहे, त काइंडली उहा शॉर्ट ई हुजे कॉल। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? वालेकुम सलाम। ए वन दौं अलाह एहसान, केर पिया ॻाल्हायो किथां खां? कहिड़ो सियाल? सज्जाद सियाल। सज्जाद साईं वेलकम भलीकार, ख़ुश आमदीद, छा चवण चाहींदो?
1: हा, इहो चवणु चाहींदासीं दिलि जी ॻाल्हि तमामु अमर जी दिलि जेके अमर जो कोई न आहे,
0: बिल्कुलु बिल्कुल साईं,
1: दुनिया में कीअं हुजनि त उमर ऐं अबे जहिड़ी खेल
0: बेशक साईं बेशक
1: दोस्तनि जा
0: नाओ शामिल कयो, नाओ शामिल कयो
1: पंहिंजो अञा तव्हांखे सिकंदड़ ख़्यालु आहे जो
0: जी अदा
1: मुंहिंजो प्यारो आशूक हुसैन ख़्याल ख़ैर कयो
0: जी
1: पंहिंजो चाचो निज़ाम आरी कयो
0: जी
1: ऐं पंहिंजो ख़ालिद हुसैन अबुल आरकाणो
0: जी
1: भाउ शेर इकमबाद
0: जी लख थोरा साईं वॾी महिरबानी जी ॿुधाए छॾियो जी, कोशिशि कंदासीं ममता लाशारी जो असां गीत लाज़मी शामिल थैंक यू सर, कुर्ब लख लाइक
1: वॾी महिरबानी,
0: ओके अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल दोस्तो, इल्म अदब आर्ट ऐं सूफ़ीज़म सकाफ़त कल्चर इन्हनि सभिनीनि शयुनि खे जेकॾहिं असांखे ज़िंदा रखणो आहे त तालीम ॾांहुं असांखे अॻु भरो थियणो पवंदो ऐं जदीद साइंस टेक्नोलॉजी जे दौर में पेर पाइणो पवंदो। वक़्तु थियो आहे ऐं न्यूज़ ब्रेक जो, ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक्स आहिनि कुझु, ऐं शॉर्ट कमर्शियल ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वापसि वरी वरंदासीं। ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खबर सियासी हुजे या समाजी,
1: मजहबी हुजे या सरकारी,
0: खबर शहर जी हुजे या गोठ जी,
1: सखर डिवीजन जी अवाम जी खबरों
0: जी सखर न्यूज़ बुलेटिन में
1: रोजाना रात 9 ऐं 10 वॻे।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया
3: चढ़ाई की कोशिश कर रही है। लॉन्ग मार्च लाइ KPA जो सब वसीला इस्तेमाल कया पे वन अफगानिस्तान में दहशतगर्दी थी है। अफगान पॉलिसी से PTI का सवाल समूरी कौम मुतफिक है।
4: PTI चेयरमैन हुकूमत का गैर मशहूर गालू करने मुतालबो कर बेस्टर गोहर चेतो वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगाया पे वे एतो वक्त गालू कई वन हा तो मसलो हल थी वे हा इस्लामाबाद असो है लॉन्ग मार्च जरूर इस्लामाबाद थी गालू बीहर थे घुर्जन ब्रेक न लगन घुर्ज अपोजिशन लीडर महमूद खान चौधरी PTI पानी से मुलाकात कर बिना गालू न थन्द हुकूमत मसले जो चाहे थी तो पानी से मुलाकात कराए।